मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म मजबूर से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, अपने लिए तो सभी जीते हैं, पर जीना तो असली वही है कि हम दूसरों के लिए जिएं। और किसी को कहां पर हम खुशी दे सकते हैं वो ढूंढिए। आइए सुनते हैं मन्ना डे की आवाज़ में फिल्म बादल से ये गीत।

दोस्तों, आप इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहिए और भोर सुहानी से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। नमस्कार।

0: समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री तोम बेरेनसेन ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। 2 दिन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और महामहिम राजा और महारानी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच विशेष रूप से सेमीकंडक्टर चिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। नीदरलैंड्स इन क्षेत्रों में विश्व का अग्रणी देश है। नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार और यूरोप में तीसरा सबसे बड़ा निर्यात स्थल है। दोनों देशों के बीच 2024-25 में 27 अरब $80 करोड़ का व्यापार हुआ था। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात यूएई की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबूधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है और उसको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, एलपीजी आपूर्ति, एआई सुपर कंप्यूटर

0: निर्माण, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करना आसान बनाने और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपए प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 23 रुपए से घटाकर 16.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीट UG परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल NTA के आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया गया है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। CBI इस मामले की जांच कर रही है। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की यह पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले और केंद्रीय पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता में 7:30 बजे से गुजरात टाइटन्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi arrived in the Netherlands late last night on the second leg of his five-nation tour aimed at deepening India's strategic and economic ties with European nations. Mr. Modi was received by the Dutch Foreign Minister Toon Berendsen upon his arrival at Amsterdam Airport. Mr. Modi reached the Netherlands after a brief stopover in the United Arab Emirates, where he held talks with UAE President Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi. At the hotel in The Hague, the Prime Minister was accorded a grand welcome with cultural and musical performances by the Indian diaspora. Dutch troops also greeted him ceremonially. Our correspondent covering the Prime Minister's Netherlands visit has filed this report. During the visit, the Prime Minister will hold bilateral talks with Dutch Prime Minister Rob Jetten and will call on their Majesties, the King and the Queen. The visit carries significance beyond bilateral ties and is expected to shape broader India-EU relations following the recently concluded India-Europe Free Trade Agreement. On Saturday, PM Modi will address the Indian community and meet CEOs of leading Dutch companies. Several important agreements are expected to be signed, particularly in the fields of semiconductor chips and AI, where the Netherlands stands as a global leader. After concluding his visit to the Netherlands, Prime Minister Modi will travel to Gothenburg in Sweden tomorrow on the third leg of his five-nation tour. Mr. Modi will hold bilateral talks with his Swedish counterpart, Ulf Kristersson. The government has imposed a special additional excise duty of 3 rupees per litre on export of petrol. According to official Gazette notifications issued by Ministry of Finance yesterday, the special additional excise duty on diesel exports has been brought down to 16 rupees 50 per litre from 23 rupees. The special additional excise duty on aviation turbine fuel has also been reduced to 16 rupees from 33 rupees a litre. The revised rates will remain in force for the next fortnight, beginning today. There has been no change in the existing excise duty.

वेल बादल पे पाव है कितना बस मस्त वाला मूवी था चक दे इंडिया, एक वेरी मोटिवेटिंग मूवी इंडीड। लेकिन यही मोटिवेशन अगर हम हमारी ज़िंदगी में लाएं और हम हमारे करियर के बारे में सोचें और एक स्टेप ले आगे बढ़ने के लिए, तो दैट इज़ कॉल्ड डिटर्मिनेशन। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9। रेनबो के साथ है लाइफ रंगीन और मेरे साथ है मिस्टर नूर फरिश्ता, जो है एक अमेजिंग बिहेवियरल स्किल्स ट्रेनर एंड करियर कोच एंड इंटरनेशनली सर्टिफाइड है और एक चीफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफिसर है। बहुत सारे कंपनीज और स्कूल्स और कॉलेजेस इनको इन्वाइट करते हैं उनसे बात करने के लिए, उनसे वो नुस्खियाँ लेने के लिए और उनसे ऐसी ऐसी ट्रिक्स और ट्रिक्स मैं कहूँ या टिप्स मैं कहूँ लेके अपनी लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए। तो सर हमारे साथ है एंड नूर सर, आई जस्ट हैड अ क्वेश्चन कि मेरे को हमेशा लगता है कि मुझे कुछ करना चाहिए था, कुछ करने की चाह थी। मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे आरजे बनना था और मेरे मम्मी पापा ने मुझे हौसला दिया, लेकिन ऐसे बहुत सारे हमारे सुनने वालों लिसनर्स में से हैं कि वो कुछ और करना चाहते थे लेकिन पेरेंटल प्रेशर से कोई और सब्जेक्ट चूज़ कर लिया, कोई और करियर के ओर बढ़ने लगे।

0: फिर बहुत कंजस्टेड फील होने लगे. एंड देन यू नो वो जद्दोजहद से कैसे, हाउ डू वी कम आउट एंड हाउ डू वी टैकल दिस पेरेंटल प्रेशर?
1: सबसे पहले तो जो यंग लिसनर्स मुझे सुन रहे हैं, जिन्होंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि आपको क्या करियर करना है, क्या करियर बनाना है, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि दो तीन चीज़ों पे आपको खास ध्यान देना है। देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, करियर्स बन जाते हैं इंडिया में ड्यू टू पीयर प्रेशर। ओके, पीयर इन्फ्लुएंस हो गया, भाई मेरा दोस्त सीए बन रहा है तो मैं भी सीए बनूंगा, यू नो मेरे डैडी डॉक्टर नहीं बन पाए तो शायद मैं डॉक्टर बनूंगा। या तो आजकल एक लेटेस्ट चला है विच इज़ ट्रेंड, यू नो आजकल ट्रेंड चला है कि भाई मैं इन्फ्लुएंसर बनूंगा। अच्छी बात है, आप बनिए इन्फ्लुएंसर,
0: जी
1: बट कुछ भी बनने से पहले आपको, मैं चाहता हूँ ये तीन सवालों पे आप डेफिनेटली ध्यान दें। सबसे पहले कि व्हाट डू आई एंजॉय डूइंग, आपको क्या करने में मज़ा आ रहा है। ओके, सेकेंड बात कि एम आई गुड एट इट, मुझे करने में मज़ा आ रहा है। सर मुझे डॉक्टर बनना है पर यू नो मैं खून देख के बेहोश हो जाता हूँ तो क्या मैं डॉक्टर बन पाऊंगा? सर मुझे पायलट बनना है, सर बड़ा ट्रेंडिंग करियर है पर मुझे सातवें माले पे चक्कर आती है सर, तो क्या मैं डॉक्टर, क्या मैं पायलट बन पाऊंगा? सो
0: ये ना
1: नंबर वन,
0: बेसिक एलिजिबिलिटी जो रहनी चाहिए.
1: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सो जैसे बेसिकली हमें ध्यान में ये रखना है कि नंबर वन इज माई यू नो एम आई गुड इन दैट। ओके, सेकेंड, जैसे अगर मैं आपको करियर कोचिंग की लैंग्वेज में ही अगर मैं आपको ये बात बताऊं तो
0: जी
1: सबसे पहले कि क्या मुझे स्किल्स हैं, ठीक है, उस चीज़ के बारे में, क्या मुझे
0: जी
1: इंटरेस्ट है?
0: जी
1: इंटरेस्ट है बड़ी बात है पर शायद स्किल नहीं है, इंटरेस्ट भी है और स्किल भी है पर शायद पर्सनैलिटी नहीं है। तो
0: जी
1: ये सारी चीज़ें हमें देखना है, क्या वो चीज़ करने में मुझे एनर्जी मिलती है। हमारे एक्स बॉस हमेशा हमें से एक बहुत अच्छी बात बोलते थे कि मंडे मॉर्निंग उठ के अगर आपको ऑफिस जाने का मन ना करे तो आप डेफिनेटली गलत करियर में हो, ठीक है। या तो
0: वो
1: अगर
0: तो
1: आप
0: बहुत सारे लोगों को लगता है यहाँ पे, मेरे जैसे झूम झूमते कोई स्टूडियो यू नो आके इतना खूबसूरत, इतना मतलब एडवांटेज तो ज़्यादा लोगों को नहीं है. लॉट ऑफ पीपल यू नो लव देयर जॉब्स, लॉट ऑफ पीपल डोंट. लेकिन ऐसे कहते हैं कि घर चलाते हैं उसके लिए, लेकिन वो पैशन का फ्यूल कहीं और यू नो चैनलाइज करते हैं. आउट ऑफ 9 to 5 दे डू दैट इज़ वेल. बट सो यू से अगर हम स्ट्रेंथ हमारा दिखाएं और स्किल्स दिखाएं तो पेरेंट्स भी कन्विंस हो जाएंगे कि
1: एब्सोल्यूटली
0: वो करियर हम ले रहे हैं.
1: एब्सोल्यूटली एब्सोल्यूटली। अगर मैं, अगर यू नो मुझे दिखता है कि मेरा बेटा कोई चीज़ में बेहतर है और वो अपने आप को प्रूव कर सकता है, तो
0: जी
1: जितने भी यंगस्टर्स मुझे सुन रहे हैं, यू से यू नीड टू प्रूव योरसेल्फ। तो मतलब कोई भी करियर स्ट्रेट अवे जंप करने से पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इंटर्नशिप्स कीजिए, प्रोजेक्ट्स कीजिए, रियल लाइफ एक्सपीरियंस कीजिए, क्योंकि यू नो दूर के ढोल कभी भी बेटर दिखते हैं, द ग्रास ऑलवेज लुक ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द
0: जी
1: फेंस,
0: तो
1: तो
0: इसके
1: करके
0: लिए
1: देखिए।
0: शायद एक मेंटर को ढूंढना जरूरी होगा. व्हाट डू यू फील?
1: एब्सोल्यूटली एब्सोल्यूटली। एंड आपको पर्सनली ढूंढने की जरूरत नहीं है, देयर आर सोशल मीडिया पे आपको यू नो काफी सारे मेंटर्स मिल जाते हैं जिनकी आप स्टोरीज पढ़ सकते हैं और
0: जी
1: जो आपको इंस्पायर करते हैं कि एक बंदा ऐसा होना चाहिए जिसको देख के आपको लगे कि मुझे ये बनना है यार।
0: सही है.
1: दैट्स इट,
0: एंड दैट कुड बी योर एम टू अचीव.
1: एब्सोल्यूटली।
0: और एक बात है, यू हैव बीन यू नो एब्सोल्युटली मास्टर्ड एंड क्वालिफाइड इन साइकोलॉजी एंड NLP सर्टिफाइड एज वेल. सो अवेयरनेस एक टूल होता है जो यू नो यू फील दैट पीपल कैन डिस्कवर द नेचुरल स्ट्रेंथ थ्रू अवेयरनेस. उसके बारे में हैव यू हैव एनी एग्जाम्पल्स, एनी स्टोरीज टू शेयर विद अस?
1: डेफिनेटली डेफिनेटली। सी बेसिकली बहुत अच्छा सा वर्ड है सेल्फ अवेयरनेस। ओके, तो आपको ये अवेयर होना चाहिए, अगर आपको यहाँ से बॉम्बे जाना है तो यू डोंट जस्ट स्टार्ट योर कार एंड जस्ट स्टार्ट मूविंग, यू नो आपको पता होना चाहिए कि मैं बॉम्बे जा रहा हूँ। आप ये नहीं बोलोगे चलो कार शुरू करते हैं, जहाँ पहुँच गए वहाँ पहुँच गए, राइट? तो जब आप अपनी कार शुरू करते हो, ठीक है आपको रास्ता नहीं मालूम है, आप मैप्स यूज़ कर लोगे, बात और है, पर आपको इतना तो पता होना चाहिए ना कि आपको मुंबई जाना है या आपको बैंगलोर जाना है, आपको
0: जी
1: जाना कहाँ है। तो फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या अच्छा लगता है। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छा लगता है, क्या आप क्रिएटिव हो? ओके, क्या आपको जैसे हमारी आरजे की तरह, क्या आपको पीपल के साथ इंटरैक्ट करना पसंद है?
0: जी
1: क्या आपको हाथ से काम करना पसंद है?
0: जी
1: आप यू शुड बी अवेयर ऑफ बेसिकली आपके नेचुरल प्रेफर

0: प्रिंसेस क्या है, आपका करियर डिसीजन जब आप उस अपने अवेयरनेस के साथ बनाते हो। सी आई एम वेरी क्लियर, ओके, मैंने अपना करियर बनाया, आई एम गुड विद पीपल। मैं बचपन से मैथ्स में कभी अच्छा नहीं था, और मैं ऑन लाइव बता रहा हूँ, हमने जो लोग मुझे सुन रहे हैं, कि मुझे कोई खास
1: बिल्कुल
0: अच्छे मार्क्स भी नहीं आए थे। तो बेसिकली व्हेन यू आर अवेयर ऑफ
1: जी
0: व्हाट यू आर गुड एट, ओके, तो दैट इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, स्पेंड टाइम अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ बिफोर यू डिसाइड ऑन अ करियर, दैट्स वॉट आई
1: यस,
0: थिंक।
1: वेरी ट्रू. अंडरस्टैंड योर सेल्फ, अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ्स, एंड आई थिंक टॉक टू पीपल फॉर गाइडेंस.
0: एब्सोल्युटली
1: टॉक टू पीपल फॉर गाइडेंस एंड सी देयर पर्सपेक्टिव, क्योंकि जो हम खुद में नहीं देख सकते शायद दूसरों के लेंसेज से वो देख पाएं और हमें बताएं कि ये तुम्हारा स्ट्रेंथ होगा. राइट, कुड बी.
0: लव द
1: एंड
0: वर्ड, लव द वर्ड, आई वुड लाइक टू से आई लव द वर्ड पर्सपेक्टिव।
1: यस,
0: बहुत जरूरी
1: पर्सपेक्टिव.
0: है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि

0: जी
1: वॉट यू आर गुड एट. ओके, तो दैट इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट. सो यू नो, मॉरल ऑफ द स्टोरी, स्पेंड टाइम अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ बिफोर यू डिसाइड ऑन अ करियर. दैट्स वॉट
0: यस,
1: आई फील.
0: वेरी ट्रू. अंडरस्टैंड योर सेल्फ, अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ्स, एंड आई थिंक टॉक टू पीपल फॉर गाइडेंस.
1: एब्सोल्युटली.
0: टॉक टू पीपल फॉर गाइडेंस एंड सी देयर पर्सपेक्टिव, क्योंकि जो हम खुद में नहीं देख सकते शायद दूसरों के लेंसेस से वो देख पाएं और हमें बताएं कि ये तुम्हारा स्ट्रेंथ होगा, राइट? कुड बी.
1: लव द
0: एंड
1: वर्ड, लव द वर्ड. आई वुड लाइक टू से आई लव द वर्ड पर्सपेक्टिव. यू नो,
0: यस,
1: बहुत जरूरी
0: पर्सपेक्टिव.
1: है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि यू नो, इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, गो एंड टॉक टू अ डॉक्टर. इफ यू वॉन्ट टू बिकम एन एलएनडी एक्सपर्ट, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, आपको एक ट्रेनर बनना है, गो, आपको एक आरजे बनना है, गो एंड टॉक टू एन आरजे. यू नो, एंड दैट आरजे विल टेल यू कि यू नो व्हाट आर गुड थिंग्स इन इट, आई इफ आई मे से, नॉट सो गुड थिंग्स इन इट. एंड देन
0: एब्सोल्युटली,
1: दिस
0: यस.
1: अवेयरनेस वुड रियली हेल्प यू कि आप जो करियर बनाओगे आप एंजॉय करोगे. आई रिपीट माई सेल्फ, मंडे उठ के आपको ऑफिस जाने में यू नो बुरा नहीं लगेगा.
0: जी
1: या जैसे जयश्री ने बोला है कि आप ईएमआई के लिए नहीं भागोगे, ओके,
0: ट्रू,
1: आप उस चीज के लिए भागोगे जिस जो करने में आपको मजा आता है.
0: करेक्ट. और यू ओन अप टू थिंग्स कि वो काम मेरा है और आप उसका ओनरशिप भी लेंगे अगर आपको वो काम बहुत पसंद है, दिल से आप करेंगे. तो एक छोटा सा गाना सुनते हैं, विल बी राइट बैक. स्टे ट्यून्ड, वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ करियर, एंड नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट करियर डिजाइन, करियर प्लानिंग, एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट आर एक्सपर्ट हियर विद बिहेवियरल स्किल्स एंड ट्रेनिंग एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स. एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, आप बिल्कुल व्हाट्सएप कर सकते हैं 9140-2323-4822. टू मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, आप ये नंबर सेव कर लीजिए. एंड यू कैन सेंड इन योर क्वेश्चंस ऑन व्हाट्सएप एंड आई विल टेक द क्वेश्चंस अप विद मिस्टर नूर फरिश्ता राइट हियर एंड गेट यू द एक्सपर्ट एडवाइस. फॉर नाउ टेक अ लिसन टू दिस ब्यूटीफुल ट्रैक. दिस इज सूरज की बाहों में फ्रॉम जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. तो सर, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा तो करियर चॉइस करेक्टली बनाना है ना?
1: बिल्कुल.
0: स्टे ट्यून्ड.

0: बातों में रोशनी, ऐसे कई लोग हैं जिनकी बातों में रोशनी होता है, जो हमें गाइडेंस दिखाता है, और उनमें से एक हमारे साथ बैठे हैं मिस्टर नूर फरिश्त साहब, जो है चीफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफिसर। तो नूर जी, आप ट्रेन करते हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स को, जो अभी यू नो लाइक वी आर वर्किंग एंड MNCs में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, जो एनालिस्ट है, बिजनेस एनालिस्ट, ऑल दिस। सो व्हाट आर द थ्री थिंग्स एक एम्प्लॉई एन एम्प्लॉई शुड डू टू सेट देमसेल्व्स अप फॉर अ लॉन्ग टर्म सक्सेस? यू आर वर्किंग डे इन डे आउट, यू गेट एन अप्रेजल, यू गेट दैट, एंड इट जस्ट कीप्स गोइंग, एंड यू जस्ट लुक बैक, यू फिनिश 5 years. तो वॉट आर द थ्री थिंग्स दैट एन एम्प्लॉय शुड डू?
1: लव दैट क्वेश्चन, थैंक यू. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, और मैं ये क्वेश्चन पे कॉन्सनट्रेट करूँगा बेसिकली फ्रेशर्स पे, जिन्होंने यू नो रिसेंटली ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया है, या दे हु आर बिटवीन यू नो 2 to 4 years ऑफ एक्सपीरियंस. द फर्स्ट टिप आई थिंक दे शुड से इज, आई वुल से दिस, लर्निंग बिफोर अर्निंग. यू नो, एक बार आप कंसंट्रेट करिए कि आप लर्न क्या कर रहे हैं. ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मुझे कितना CTC मिला है. ये इंपॉर्टेंट है कि मैं लर्न क्या कर रहा हूँ, मैं उस करियर में, मैं उस जो जॉब में जा रहा हूँ उसमें मैं लर्न क्या कर रहा हूँ. वर्क को अंडरस्टैंड कीजिए, कंपनी कल्चर को अंडरस्टैंड कीजिए, और बेसिकली लोगों के साथ कोलैबोरेट करने की कोशिश कीजिए.
0: दिस इज इम्पोर्टेंट, कोलैबोरेशन, यस।
1: सेकेंड थिंग विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और मैं चाहता हूं कि जो लोग मेरे लिसनर्स मुझे सुन रहे हैं वो इस चीज को अंडरलाइन करके इस चीज पे कॉन्सेंट्रेट करें, इज बिल्ड स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन. ओके, वी हैव सीन लॉट ऑफ पीपल, हमने ऐसे कई लोग देखे हैं जो टेक्निकली बहुत बढ़िया है, जो शायद इंजीनियर्स हैं, जो शायद यू नो कोड राइटिंग करते हैं, बट दे आर अनेबल टू कम्युनिकेट देयर थॉट्स इनटू वर्ड्स.
0: यस।
1: उनके दिमाग में बहुत कुछ है पर शायद उनके शब्दों में वो चीज नहीं आ रही है. तो बिल्ड गुड कम्युनिकेशन, यू नो दैट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट. कम्युनिकेट करें, यू नो
0: दैट्स हाउ यू टीच देम अबाउट स्टोरी टेलिंग फॉर्मैट्स, हाउ दे हैव टू कम्युनिकेट, हाउ दे हैव टू पुट देयर आइडिया फॉरवर्ड। शायद वो मिलियन डॉलर आइडिया हो जो उनके मैनेजर को पसंद आए, लेकिन टू रैप इट अप इन अ ब्यूटिफुल प्रेजेंटेशन और द वे यू टेल, दैट इज वॉट यू टीच देम, राइट?
1: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कम्युनिकेशन के बारे में है, जो मैं बहुत दिल से कहना चाहूँगा, कि वर्क ऑन योर इंग्लिश लैंग्वेज. सी, देर आर अदर लैंग्वेजेस, इंडिया इज अ लैंड ऑफ ब्यूटिफुल लैंग्वेजेस,
0: ओह यस,
1: ब्यूटिफुल लैंग्वेजेस,
0: ऑथर्स,
1: वी हैव गॉट
0: ऑथर्स,
1: यू नो
0: बुक्स,
1: अमेजिंग लैंग्वेजेस, बट यू नो लाइक इट और नॉट, इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज.
0: राइट,
1: इंग्लिश इज द इंटरनेट लैंग्वेज. सो
0: करेक्ट,
1: वी नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इंग्लिश लैंग्वेज. सो दैट इज वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि यू नो वी आर लिविंग इन अ ग्लोबल विलेज नाउ. वी आर लिविंग इन एन एनवायरमेंट जहां आपके क्लाइंट US से हो सकते हैं, UK से हो सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया से हो सकते हैं, और उनके सामने अच्छी रीत से, अच्छी तरह से आपको कम्युनिकेट करना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है.
0: ऐसे बहुत बार हो जाता है कि आप क्लास के टॉपर हो, लेकिन जब कैंपस प्लेसमेंट्स होते हैं या यू नो तब ठीक है, कैसे भी पुल ऑन कर लेते हैं, क्योंकि कॉलेजेस में बोलते हैं कि इनके मार्क्स ज़्यादा है, इनको लीजिए ना। एक बार कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर होने के बाद कम्युनिकेशन स्किल्स में अगर हम परफेक्शन पाने की ओर नहीं चले, तो दे कुड बी इश्यूज़ वेर यू कैन फॉल बैक अमंगस्ट योर टीम, क्योंकि इन कॉर्पोरेट इट्स टीम प्लेयर्स, राइट? सो हाउ डू यू जस्ट गिव अस अ लिटिल टिप्स, लाइक अभी तो पॉडकास्ट है, वो है, हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर इंग्लिश?
1: ऑलराइट, इंटरेस्टिंग. इंग्लिश लर्न अगर आपको करना है, सो आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल टिप, बहुत आसान सा टिप देंगे. इट्स कॉल्ड 3x3, राइट? 3x3, हर रोज के 3 नए वर्ड पिक कीजिए. ओके, विच शुड नॉट बी टू टफ. ओके, जो आप रेगुलर लैंग्वेज में यूज करते हैं, यू नो मैं मजाक में बोलता हूँ कि वी इंडियंस लव 3 वर्ड्स, गुड, नाइस, ओके.
0: We use that often,
1: वी यूज
0: yeah.
1: वेरी ऑफन, हाउ वॉज द आइसक्रीम, गुड, हाउ वॉज गोवा, नाइस, ओके. लर्न न्यू वर्ड्स, दे इट इट इट मे नॉट बी वेरी टफ वर्ड्स लाइक एनसाइक्लोपीडिया और समथिंग लाइक दैट, कॉमन वर्ड्स, यू नो, हाउ वॉज द बिरयानी, गुड, नाइस, ओके की जगह आप बोल सकते हैं माउथ.

0: watering.
1: Delicious.
0: Delicious. How was Goa? Serene. This is kisam ke teen word aap pick kijiye aur wo teen word ko din mein teen baar use kijiye. That is called the 3x3 technique. Agar aap roz ke teen word seekh rahe ho, to aap ek saal mein aapki vocabulary mein 1000 words add kar rahe ho. और जब आप अपनी वोकैबुलरी में 1000 वर्ड्स ऐड करते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको कम्युनिकेशन करने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज इट इज नॉट अबाउट लैंग्वेज, इट्स ऑल अबाउट वोकैबुलरी. सो स्टार्ट बिल्डिंग योर वोकैबुलरी. द बेटर योर वोकैबुलरी इज, आप अम्स आज और यूनोज नहीं करेंगे लोगों के सामने. ये हमें ये एक चीज मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ.
1: We were taught that जब ऑन एयर जाते हैं तो यू वोंट से एंड यू कांट फॉल शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, यू कांट वर्ड्स कांट गो मिसिंग एज एन आरजे.
0: एंड जैसे आपको मालूम है लोग अम्स आज और यूनोस क्यों करते हैं?
1: बिकॉज़ दे फॉल शॉर्ट ऑफ वर्ड्स.
0: या बिकॉज दे थिंक इन देयर लोकल लैंग्वेज. और जब आप लोकल लैंग्वेज में सोच रहे हो और इंग्लिश में उसको चेंज कर रहे हो तो वो जो टाइम होता है उसमें बफरिंग होता है और वो बफरिंग का एक आवाज होता है जिसमें आप आ करते हैं, जिसे आप कहते हैं फॉगॉन्स. और जब आप कोई एक ही शब्द बार बार यूज करते हो, लाइक बेसिकली ओके यू नो, ये शब्दों को आप कहेंगे फिलर्स. और जब आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग नहीं होती है तब आप एक बैसाखी का सहारा लेते हो. आप एक सहारा लेते हो जिसे आप कहेंगे फॉगन्स एंड फिलर्स. और इसीलिए से अम्स आज एंड यूनोज हो सकते हैं और यहाँ आपका कम्युनिकेशन मार खाता है.
1: तो कम्युनिकेशन कॉर्पोरेट में हम आते हैं
0: जी
1: तो सिर्फ पिच देने के लिए, अगर आपका कोई आइडिया पिच करने के लिए एक मीटिंग में आपको होता है सिर्फ 1 मिनट. ट्रस्ट मी दिस इज व्हाट हैपेंस. एंड वो 1 मिनट में अगर आप 20 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स, जो आधा मिनट है जो आप फिलर्स में यूज कर देते हैं, तो आपका जो मेन क्रक्स है वो कहीं खो जाता है.
0: एब्सोल्युटली.
1: सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एम्फसाइज ऑन नॉट यूजिंग फिलर्स बट probably writing a script in your head before you say something, right? Wow, so much to learn. 3x3, we'll remember that. So yes, we will move ahead. We have a very very small song which I just, you know, have to play because I need to process this wonderful idea. So listeners, this is Akashwani FM Rainbow 101.9. Rainbow adds colors to your life. We are in conversation with a behavioral skills trainer and chief training and development officer who's right here to tell us more about career guidance, advancement for students and also working professionals. Stay tuned so that you don't miss out on anything interesting.

0: बदला नज़ारा इंग्लिश विंग्लिश से। ऑफ कोर्स हमने बातें की कि इंग्लिश कितना ज़रूरी होता है जब आप इंटरव्यू देने जाते हो। इंटरव्यू ठीक है, ऐसे तैसे करके इंटरव्यू भी आपने अकम्प्लिश कर लिया, उसके बाद जब कॉरपोरेट वर्ल्ड में दुनिया में जाते हो तो वहाँ पे स्मूथ थिंग्स होने के लिए हमें कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब बेहतर करना चाहिए। 3x3 अमेजिंग रूल, 3 वर्ड्स सीखिए और वो पूरा दिन आप इस्तेमाल करें, एटलीस्ट 3 बार इस्तेमाल करें। इट्स रियली इंडीड अमेजिंग। अभी हमारे साथ है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर नूर फरिश्ता जी, हु इज़ ऑफ कोर्स चीफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफिसर है, बिहेवियरल स्किल्स ट्रेनर है, करियर कोच है और हमें गाइडेंस देने के लिए एक्सपर्ट है साइकोलॉजी में और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में सर्टिफाइड भी है। सर, इट्स जस्ट अमेजिंग दैट द यूनिवर्स इज मेड ऑफ स्टोरीज एंड नॉट एटम्स, ये मैंने कहीं पढ़ा है। और इतनी सारी कहानियाँ हमारे इर्द गिर्द है जो हमें इंस्पायर करती हैं। एक ऐसी कहानी आप सुना दीजिए जो शायद हमारे लिसनर्स और मुझे इंस्पायर करें।
1: चलिए, यस, यू नो, कहानियाँ बहुत प्यारी चीज़ होती है। मैं ये मानता हूँ कि जो पीपीटी की 10 स्लाइड आपको नहीं बता सकती, वो शायद आपको एक कहानी बता दे। तो चलिए, हमारे व्यूअर्स के लिए एक कहानी शेयर करता हूँ, विच इज़ माई पर्सनल फेवरेट। ठीक है, ये मैंने एक किताब में पढ़ी थी और शायद रह गई मेरे साथ वो कहानी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और अपने व्यूअर्स के लिए वो कहानी शेयर करता हूँ। एक बंदा था जो एयरपोर्ट गया फ्लाइट पकड़ने। ठीक है, एक इमेजिनरी बंदे का नाम ले लेते हैं, अक्षय मेहता। इमेजिनरी, ठीक
0: ठीक
1: है।
0: है।
1: अक्षय मेहता गए एयरपोर्ट पे, उनका 2:20 की फ्लाइट थी, बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि फ्लाइट जा रही थी गोवा। अब वो गोवा जा रहे थे अपने दोस्तों के साथ छुट्टी मनाने, बड़े खुश। अब होता है ना कभी कभी कि फ्लाइट के जस्ट आधे घंटे पहले एक अनाउंसमेंट हो गया कि तकनीकी कारणों के वजह से आपकी फ्लाइट अब 2 घंटे लेट से उड़ेगी।
0: ठीक है।
1: करने को कुछ था नहीं, बंदे के हाथ में बोर्डिंग पास था, बोले चलो एयरपोर्ट पे टाइम पास करता हूँ। वो गया एयरपोर्ट पे, टाइम पास कर रहा था, वहाँ उसे वेइंग स्केल दिखा, वेइंग
0: अच्छा
1: मशीन
0: ठीक है,
1: दिखा।
0: वेइंग मशीन।
1: बोले ठीक है, अब गोवा जा रहा हूँ, चेक कर लेता हूँ मेरा वजन कितना है। तो पैसे डाले और पता है ना, वो चिट्ठी निकलती है नीचे से, आपका दिन मंगलमय हो। तो ऐसी एक चिट्ठी निकली कि भाई नमस्कार, आपका नाम है अक्षय मेहता,

0: का वजन है 78 kgs, 78 किलो,
1: हम्म,
0: और आप ले रहे हैं 4:20 की गोवा वाली फ्लाइट। परेशान, बोले भाई इसको कैसे पता चला मेरा नाम अक्षय मेहता है और इसको कैसे पता चला कि मैं 4:20 की गोवा की फ्लाइट ले रहा हूँ। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। तो वो दूसरी बार सेम ट्राई करता है, सेम चिट्ठी निकलती है, तीसरी बार सेम ट्राई करता है, चौथी बार सेम ट्राई करता है, इस तरह से। इनफैक्ट 10वीं बार तो वो बाजू वाले रेस्टोरेंट में जाके कुछ खा पी के आता है,
1: फिर ट्राई
0: फिर
1: करता
0: ट्राई करता है,
1: है
0: सब कुछ सेम रहता
1: जी
0: है। इन शॉर्ट वो
1: हाँ,
0: तकरीबन 20 बार ट्राई करता है जस्ट टू प्रूव द मशीन रॉन्ग। और 20वीं बार उसको चिट्ठी आती है, नमस्कार, आपका नाम अब भी अक्षय मेहता है, आपका वजन अभी भी 78 kgs है,
1: जी
0: और आपकी गोवा की फ्लाइट तो कब की उड़ गई। तो दोस्तों,
1: ध्यान नहीं
0: कहानियां,
1: था
0: जी
1: जी।
0: कहानियां आपको ये सिखाती है। ये कहानी से हमने क्या सीखा कि लॉट ऑफ टाइम्स यू कॉन्सेंट्रेट सो मच ऑन द एक्टिविटी दैट यू मिस द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द लाइफ। जो
1: वेरी
0: आप
1: ट्रू,
0: कर रहे हो एक्टिविटी है, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप करियर कर रहे हो, ये एक्टिविटी है। जिंदगी में आपका अकम्प्लिशमेंट क्या है? मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि वेइंग मशीन के चक्कर में अपनी फ्लाइट मत छोड़ देना प्लीज।
1: बिल्कुल बिल्कुल। इतने मशरूफ ना हो किसी चीज़ में कि आपका जो एम है, जो गोल है, उसको आप बस छोड़ दें। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी इंडीड। एंड तो आजकल ना ये एक्टिविटी में खो गए हैं बहुत सारे लोग। अगर आप फ़ोन का यूसेज का जो 1 वीक का देखें, तो इतने घंटे हम फ़ोन इस्तेमाल करते हैं और रील स्क्रॉल करते हैं, डूम स्क्रॉलिंग कहते हैं। ये एक्टिविटी में शायद ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो जा रही, छूट जा रही हैं। और अगर हमारे सामने कोई बैठे है, बड़े हो, बुज़ुर्ग हो या हमारे फ्रेंड्स ही हो, हम उनकी तरफ देख नहीं सकते, क्योंकि हम ना हम एक्टिविटी में, हमारे स्क्रोलिंग में हम मशरूफ है। तो ये क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग व्हेन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ एआई आल्सो? लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग इनटू मेकिंग सम कंटेंट एंड पोस्टिंग इट, व्हिच वी डोंट नो इफ इट इज इम्पोर्टेंट और नॉट, राइट?
0: ब्यूटिफुल। जैसे एक बहुत ही, जब आप ये वर्ड बात देखते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके, तो एक बात हमें ध्यान में रखना है कि वो वर्ड में ही आर्टिफिशियल है, राइट? सो इट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पर आजकल हो क्या रहा है कि हमारी इंटेलिजेंस इज बीन टेकन केयर बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आजकल हो ये रहा है कि जैसे आपने स्क्रोलिंग की बात की, बहुत सारे मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, मेरे पास वर्किंग प्रोफेशनल्स आते हैं। आई वर्क विथ CEOs एंड CWOs ऑफ द कंपनीज, ओके,
1: CXO बोलते हैं
0: CXO
1: ना।
0: क्लब में हम काम करते हैं, और बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं वो आके हमें बोलते हैं कि नूर सर, क्या मोबाइल देखना गलत चीज़ है? क्या के ड्रामास देखना, या क्या हमारे वेब सीरीज देखना या
1: जी
0: बिंज वॉचिंग करना गलत है?
1: जी
0: और मैं मेरे सभी दर्शकों को एक ही चीज़ बोलूँगा कि कुछ भी गलत नहीं है, पर कुछ भी हद से ज्यादा करना ये
1: जी
0: गलत है। मैं
1: जी
0: स्क्रोलिंग करने में इतनी बिजी हो गई कि 8 घंटे कहाँ निकल गए पता नहीं चला, ओके,
1: सही
0: मैं एक दिन में मैं पूरी की पूरी वेब सीरीज खत्म कर लूंगी। ये हमें ध्यान में रखना है कि टेक्नोलॉजी गलत नहीं है, टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, बट टेक्नोलॉजी में आप सीख क्या रहे हो?
1: राइट
0: देयर इज लॉट, जब आप टेक्नोलॉजी खोलते हो, जब आप अपना फोन खोलते हो, तो नॉलेज है, क्रैप है, और बहुत सारी ऐसी नॉलेज है जो शायद नॉलेज ही नहीं है।
1: जी
0: तो
1: जी
0: इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको क्या चूज करना है, आपको कंटिन्यूस लर्निंग करना है, और दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। सो दर्शकों, आप वेब सीरीज देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंस्टाग्राम पे रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि ब्रेक कब मारना है। दैट्स द
1: सही,
0: इंपॉर्टेंट वन।
1: एब्सोल्युटली। आप ब्रेन बेस्ड सर्टिफाइड कोच भी है। जब हम बात करते हैं सर की इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, एंड इसके बारे में आपने सर्टिफिकेशंस भी किया है, तो व्हाट रोल डज दिस इमोशनल इंटेलिजेंस प्ले इन अ करियर एडवांसमेंट?
0: दो चीज़, अगेन इमोशनल इंटेलिजेंस, समझते हैं इसको। इमोशनल इंटेलिजेंट, यू हैव टू बी इंटेलिजेंट अबाउट योर इमोशंस, राइट? जैसे मैंने बोला कि क्या है इमोशंस, है इमोशनल इंटेलिजेंस है वेर हाउ डू यू मैनेज योर स्ट्रेस, ओके, हाउ डू यू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, ओके, आप अपने इमोशंस को समझते हैं। चार चार चीज़ें ध्यान में रखना है।
1: जी
0: पहली बात, आप अपने इमोशंस को समझो,

0: आप अपने इमोशंस को मैनेज करो, मैं रिपीट करता हूं, कंट्रोल नहीं करो, मैनेज करो। क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स मेरे पास आते हैं, बोलते हैं सर थॉट्स को कैसे कंट्रोल करें। इम्पॉसिबल है दोस्तों, क्योंकि एक दिन में आपको 60,000 के करीब थॉट्स आते हैं
1: जी,
0: एट एन एवरेज, उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे।
1: और आपके न्यूरो एस्पेक्ट्स हर 21 डेज में बदल जाते हैं, दे फॉलो ऑफ, दे जनरेट न्यू थॉट्स एंड एवरीथिंग, एंड वी आर इवॉल्विंग. तो क्या आप मेडिटेशन टेक्निक्स भी यूज़ करते हैं अपने सेशंस में?
0: एब्सोल्यूटली, मेडिटेशन आप कर सकते हो, बट अगेन मेडिटेशन के बारे में समझिए, मेडिटेशन इज नॉट अबाउट गॉड। ओके, मेडिटेशन इज स्पेंडिंग सम क्वालिटी टाइम विथ योरसेल्फ। तो बहुत सारे लोग मुझे आके पूछते हैं कि नूर सर क्या मेडिटेशन सिर्फ सुबह 4 बजे करना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ऑफिस में बैठे हैं, मेडिटेट करिए। आप कॉलेज में बैठे हैं, मेडिटेट करिए। आंख बंद करिए, जस्ट क्लोज योर आइज एंड यू नो थिंक अबाउट योरसेल्फ। और कुछ भी मत सोचिए। हाँ ना, अब मैं जानता हूँ मेरे व्यूअर्स क्या सवाल पूछेंगे कि नूर सर जब मैं कुछ नहीं सोचता हूँ तभी मेरे दिमाग में सबसे ज्यादा थॉट्स आते
1: हाँ
0: हैं। और मैं जानता हूँ कि जयश्री भी मुझसे यही पूछने वाली थी।
1: जी, मतलब कैसे करें. और ऐसे जब हम ऑफिस में होते हैं, मैं नौकरी की बात कर रही हूँ, व्हेन वी आर एक्चुअली इन अ कॉर्पोरेट ऑफिस, तो कोई प्रोजेक्ट होता है और टू डू लिस्ट हमारा इतना बड़ा होता है, और हम वो टू डू लिस्ट में दो तीन चीज़ें भी नहीं कर पाते विद फोकस, एंड गुस्सा आता है. कभी कभी फीडबैक जो हमें दिया जाता है वो कंस्ट्रक्टिव नहीं होता. अगर कोई कुछ हमें सिखा रहे हैं तो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक नहीं दे सकते, वो कुछ उनका टोन ज़रा हो
0: जी
1: गया. कभी हमें रोना आता है, कभी गुस्सा आता है, कभी लगता है कि वो ड्राफ्ट में जो रेजिग्नेशन लेटर है उसको मैं सेंड कर दूं. ये इमोशंस को कैसे हम मोल्ड करें?
0: देखिए, दो चीज बहुत बढ़िया आपने की। एक तो अबाउट द फीडबैक, राइट। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास और बोलते हैं कि सर इस बंदे ने मुझे खराब फीडबैक दिया, इस बंदे ने मुझे पॉजिटिव फीडबैक दिया, इस बंदे ने मुझे नेगेटिव फीडबैक दिया। फीडबैक इज इक्वल टू ओपिनियन। फीडबैक एक ओपिनियन होता है जो किसी ने आपको दिया। अगर आपने वो ओपिनियन को पॉजिटिवली लिया तो वो हो गया पॉजिटिव फीडबैक, अगर आपने वो ओपिनियन को नेगेटिवली लिया तो वो हो गया नेगेटिव फीडबैक। सो दोस्तों प्लीज ध्यान में रखिए कि लोग आपको नेगेटिव फीडबैक नहीं देते, लोग तो सिर्फ आपको फीडबैक देते हैं, उसे पॉजिटिवली या नेगेटिवली लेना वो अपने आप पे होता है। तो आप उसे लेते कैसे हो? देखिए
1: कि मेरा
0: बारिश
1: चिल्ला दिया, मतलब जो उसमें आप एसेंस ढूंढोगे, उनका इंटेंशन ढूंढिए, लेकिन रादर उनका इमोशन मत देखिए जो भी आपको फीडबैक देते हैं.
0: भाई, भाई बंदे ने चिल्ला दिया इसका मतलब ये नहीं कि ना आप चिल्लाओगे। आप आंख को आंख से नहीं बुझा सकते जयश्री।
1: सही है.
0: जब सामने वाला आंख दे रहा है, ठीक है, देर आर पीपल हु माइट शाउट एट यू, पीपल हु माइट बिहेव बैडली विथ यू। आप देखिए, डोंट ट्राई टू कंट्रोल द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू।
1: विच
0: ओके,
1: यू कांट एज
0: यू
1: वेल.
0: कांट, दैट्स एब्सोल्यूटली। एक ही चीज आप अपने आप को मैनेज कर सकते हो, आप अपने आप को। जब आप दुनिया को मैनेज करने जाओगे तो प्लीज अंडरस्टैंड करो, आप किसी को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो और वही टाइम पे वो बंदा आपको मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। तो
1: जी
0: यहां आपके इमोशंस ओवरऑल चले जाते हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपको यू नो आई वुड लाइक टू से अबाउट इमोशंस इज डोंट ट्राई टू मल्टी टास्क। ओके, मल्टी टास्क एंड आई वुड लाइक टू से इट ऑनलाइन,
1: इमोशंस में मल्टीटास्क या एक्टिविटीज में
0: एक्टिविटी
1: मल्टीटास्क?
0: में मल्टी टास्क। आपने आपने अपना कन्वर्जेशन स्टार्ट किया एक बात ये बोल के कि वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ टू डू लिस्ट, और जो टू डू लिस्ट होती है वो हम एक साथ करने जाते हैं और वहां हमारे इमोशंस कंट्रोल से बाहर चले जाते
1: जी.
0: हैं। मल्टी टास्क इज अ जोक जयश्री। आज की तारीख में लोग मल्टी टास्क नहीं करते, मोनोटास्क करिए। याद रखिए ये वर्ड, इट्स नॉट मल्टी टास्क, एक मोनोटास्क करिए। एक काम करिए, जबरदस्त करिए और 100% कीजिए।
1: Because you're all over the place if you're multitasking as well.
0: यू आर डूइंग टू मेनी थिंग्स एट अ टाइम।
1: I keep telling this to my listeners. जब ड्राइविंग करते हैं लोग तो इतना मल्टीटास्क करते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, फोन देखते हैं, किसी से बात करते हैं, वो ये, तो मल्टीटास्क ना करें. जस्ट लाइक, एंड लाइफ इज ऑल्सो लाइक यूर ड्राइविंग योर व्हीकल एंड योर करियर. इफ यू मल्टीटास्क यू माइट रेल डाउन, राइट?
0: फ्यू थिंग्स वेर यू कैन मल्टी टास्क, जैसे कि चलो आप गाड़ी चलाते चलाते गाने सुन रहे हैं। अभी मेरे बहुत सारे व्यूअर्स होंगे जो अभी शायद
1: रेडियो सुन रहे हैं.
0: कार
1: जी
0: चला रहे हैं और रेडियो सुन रहे हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि साइड में पार्क करो और नूर सर को सुनो। यू नो आप चला सकते हैं, बट जो इम्पॉर्टेंट वर्क है, यू नो आप एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आपका कल एग्जाम है और आप पढ़ाई कर रहे हो और आप बोलेंगे नहीं मैं टीवी देखते देखते अपना बायोलॉजी पढ़ूंगा।

0: अगर आप कर सकते हो तो बहुत बड़ी बात है, बट मुझे नहीं लगता ऐसे किया जा सकता है। सो
1: प्रायोरिटाइज योर फोकस ऑन वॉट एक्टिविटी एंड एस्पेक्ट
0: लव
1: ऑफ
0: द वर्ड
1: दैट.
0: प्रायोरिटाइज, बिकॉज एवरीथिंग इज अ प्रायोरिटी। यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज प्रायोरिटी विद इन प्रायोरिटी।
1: What is priority within priority?
0: थिंक अबाउट इट।
1: Well, I wish this conversation keeps going, but we have very few minutes. We'll be right back. A beautiful song for beautiful people out there. This is by Ed Sheeran. Take it away. This is Akashvani, Hyderabad FM Rainbow 101.9. I'm Jayashree, and with me is our guest for today, Mr. Noor Farishta. Take it away.

0: Beautiful people out there. We're talking here about coaching, mentoring. We're talking about behavioral skills. We're talking about what you should be doing and what you have to do, on what you have to focus with awareness in your profession and what you have to prioritize. That sums up. And we've been talking to our expert right here. He's a professor. For me, he's a professor. He's a chief training and development officer and a behavioral skills trainer. And more than all this, he is a person that a lot of people look up to. And he's sitting right in front of me, Mr. Noor Farishta, right here. So, sir, I always feel that we want to do so many things. We want to achieve so much. But there's always a hindrance that not others give us, where we fight battles with our own people, that I want to do this, why you're not allowing me? Especially, I feel slightly women have a lot of battles to fight to take it forward. But what about these challenges in our head? What about these mental blocks that we have? How do we tackle those?
1: डेफिनेटली जैसे कहते हैं कि जब दिमाग है तो सोच भी होगी, और सोच हमेशा अच्छी होना ज़रूरी नहीं है. हम बहुत कुछ सोचते हैं. हमारा हमारा दिमाग है फाइट फ्लाइट या फाइट मेंटालिटी पे चला जाता है.
0: जी
1: तो एक चीज़ जो मैं अपने सारे व्यूअर्स को बोलना चाहूँगा कि वन ऑफ द मेंटल ब्लॉक तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देर आर मेनी बट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेंटल ब्लॉक इज सेल्फ डाउट. ओके, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए. फॉर गॉड सेक, हर इंसान में कोई ना कोई कैपेबिलिटी होती है. फेलियर से मत डरिए. मैं
0: जी
1: हमेशा एक सवाल पूछता हूँ कि
0: बिल्कुल
1: सक्सेस का ऑपोजिट क्या है.
0: यस
1: सक्सेस का ऑपोजिट है फेलियर? नहीं, सक्सेस का
0: अनसक्सेसफुल
1: ऑपोजिट है एग्जैक्ट, जब यू नो फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस. तो ये आप चीज को ध्यान में रखिए. प्रॉब्लम इज नॉट लैक ऑफ टैलेंट, इट इज अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. सो जस्ट जस्ट गो विद द कॉन्फिडेंस एंड
0: मेक
1: यू नो
0: सेंस
1: दैट्स व्हाट आई फील.
0: एब्सोल्युटली वंडरफुल एंड वी हैव गेन्ड सो मच ऑफ नॉलेज फ्रॉम यू सर एंड अगर सब वक्त की पाबंदी ना होती तो हम ये कॉन्वर्जेशन ऐसे ही चलाते. तो अगर हमें आपको कॉन्टैक्ट करना है या हम कहीं आपको कोई क्वेश्चंस, कोई स्टूडेंट सुन रहा हो, उनको कोई करियर गाइडेंस चाहिए, तो हम वैसे

0: व्हाट्सएप मैसेजेस तो आ ही रहे हैं, लेकिन आपको कैसे हम कांटेक्ट करें?
1: प्लीज फील फ्री टू राइट अ मेल ईमेल टू यू. माय ईमेल इज नूर NWR@ impressionsedu.com. इम्प्रेशंस विद अ एस. ओके. IMPRESSIONS impressionsedu.com. फील फ्री. आई विल मेक श्योर दैट प्लीज रेफर कीजिए कि आपने मुझे सुना था
0: जी,
1: और मैं पर्सनली आपके ईमेल को आई विल आंसर इट. एंड
0: वंडरफुल,
1: जैसे वक्त की पाबंदी है, मैं बिफोर आई लीव माई लिसनर्स, आई वुड लाइक टू जस्ट लीव माई लिसनर्स विद वन पावरफुल
0: यस
1: एडवाइस.
0: प्लीज योर
1: वन
0: एडवाइस.
1: पावरफुल एडवाइस इज नेवर थिंक दैट यू आर ऑर्डनरी. आप ऑर्डनरी नहीं हो. हर पर्सन के पास टैलेंट है, पोटेंशियल है. डर से मत डरिए, स्लो प्रोग्रेस से मत डरिए और डिफिकल्ट बिगिनिंग से मत डरिए. थ्री वर्ड्स एंड आई विल साइन ऑफ. आई विल कीप ऑन सेइंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ. एक स्टेप, जस्ट एक छोटा सा स्टेप, एक अपॉर्चुनिटी, एक मोमेंट ऑफ करेज आपकी जिंदगी बदल सकता है. सो कीप ऑन
0: एब्सोल्युटली,
1: डूइंग दैट.
0: वन स्टेप एट अ टाइम, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड यू कैन चेंज योर लाइफ. एंड ऑल्सो माई हम्बल रिक्वेस्ट एज एन आरजे विद यू, डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ बिकॉज यू आर यूनिक एंड यू आर जस्ट नॉट ऑर्डनरी, यू आर अमेजिंग. थैंक यू नूर सर फॉर बींग हियर विद अस. थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल कॉन्वर्जेशन, एंड होप टू सी यू सून अगेन.
1: Thank you so much for inviting me. Looking forward.
0: Wonderful. So here we have our news headlines are coming up right next. Stay tuned. This is Akashwani Hyderabad FM Rainbow 101.9. Rainbow adds colors to your life. And I'm leaving you right here with wonderful thoughts from this amazing conversation with our behavioral skills trainer and coach, Mr. Noor Farishta.

आदाब, नमस्ते, हेलो आदाब. में वी हैव लाइक ओके नॉट सिंगल नॉट बाय बट इज अ ट्राई लिंगुअल शो जहाँ वेस्टर्न म्यूजिक बॉलीवुड सॉन्ग्स यू नो वी काइंड ऑफ यू नो प्ले ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल सॉन्ग्स फॉर यू टू लिसन एंजॉय एंड यू नो अब्जॉर्ब. एब्सोल्युटली. सो राइट नाउ कमिंग अप राइट नेक्स्ट इज लॉस्ट फ्रीक्वेंसीज बाय जेम्स ब्लंट. दिस इज अ वंडरफुल ट्रैक, इसको सुनिए एंड विल बी राइट बैक. स्टे ट्यून्ड.

ऐसा वैसा दिन नहीं है, अंतर जातीय दिन है जहाँ शांति से रहना है और साथ में रहना है। हाँ जी, वही बात है, इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस, साथ में शांति से रहो, यही तो सब कह रहे हैं, यही तो सब बड़े लोग कहते हैं, यही तो हमारे घर में मम्मी पापा भी कहते हैं कि शांति से क्यों नहीं रहते तुम लोग बच्चे लोग। तो यही है कि यू नो पीस इज सुपर इम्पोर्टेंट। वेल, क्या ही बताएं आज के बारे में, एक दिन ऐसा रहना चाहिए कि शांति हमें रखना चाहिए और साथ में रहना चाहिए, हर दिन ऐसा होना चाहिए ना, इजंट दैट ब्यूटिफुल। वेल, ये भी बताना चाहती हूँ कि दिस एंटायर ईयर इज ईयर ऑफ वॉलंटियरिंग। जी हाँ, आपको वॉलंटियर करना है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर आप नेचर को पसंद करते हैं तो आपको लेक क्लीनिंग कर सकते हो, क्लीनिंग ड्राइव्स में जा सकते हो, या प्लांटिंग ट्री

वो भी कर सकते हो। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो कुछ आप करना चाहे एज अ वॉलंटियर कर सकते हो। एंड अगर आपके पास वक्त हो, वीकेंड क्यों नहीं सही, हाँ वीकेंड में भी आप जाके वॉलंटियरिंग कर सकते हो। देयर इज सो मच यू कुड डू विथ योर काइंडनेस, बिल्कुल। एंड इतनी गर्मी है, जस्ट ट्राई पुट अ वाटर बॉल आउटसाइड योर हाउस फॉर द बर्ड्स, आउटसाइड योर बैल्कनी फॉर द बर्ड्स एंड आउटसाइड योर गेट फॉर द डॉग्स, फॉर द एनिमल्स, फॉर द कम्युनिटी एनिमल्स। वाई नॉट, इवन दैट इज अ ब्यूटिफुल एक्ट ऑफ काइंडनेस, है ना? बिकॉज समर इज क्रॉचिंग। हमारे जैसे वो तो गन्ने का जूस और वाटरमेलन तो नहीं खा सकते। तो बींग काइंड इज सुपर वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स टेक इट अवे। अभी दमदार गाने बॉलीवुड के आने वाले हैं, मतलब ऐसे दमदार गाने की क्या ही बताऊं, मतलब डांस करने का मन करेगा, और क्यों ना ही करें, सैटरडे है आज। सो लेट्स लिसन टू अमेजिंग बॉलीवुड तड़के वाले गाने राइट हियर राइट नाउ। स्टे ट्यून्ड, दिस इज नमस्ते हेलो आदाब विथ मी आरजे जयश्री, एंड आई हैव माई को आरजेज राइट हियर। उनके बारे में भी और बताती हूँ, आप कहीं जाइएगा मत। स्टे ट्यून्ड।

0: अच्छा अंकल जी, मैं जा रहा हूँ।
1: कोई कहीं नहीं जा रहा है। वो तो अक्षय कुमार थे, हम तो यही है। हम यानी मैं अकेली नहीं हूं स्टूडियो में, मेरे साथ है मेरी को आरजे आरजे श्यामा।

0: ಹಲೋ ಶಮಾ.
1: ಹಾಯ್ ಜಯಶ್ರೀ,
0: ಹೌ ಆರ್ ಯು?
1: ಫೈನ್.
0: तो शमा को मौका मिला हमारे साथ यहाँ पे इंटरव्यू को एक्सपीरियंस करने का, जो लाइव इंटरव्यू हुआ था सुबह. और अभी जो भी गाने बज रहे हैं वो शमा की चॉइस है. एंड शमा, हाउ आर यू फीलिंग दैट यू आर गोइंग टू टेक ओवर बींग एन आरजे?
1: आई एम फीलिंग सो क्या मैं बताऊँ अपनी फीलिंग. इतनी सुपर लग रही है, ऐसा लग रहा है मैं एक बर्ड हूँ और मेरे पास विंग है और मैं उड़ रही हूँ.
0: बिल्कुल. तो एक आरजे बनने का सपना जो जब पूरा होता है तो बहुत अच्छा लगता है. मैं 11 साल से ये सपने को जी रही हूँ और अभी आप आके यहाँ पे शो करेंगे तो इट्स अ वेरी लवली एक्सपीरियंस. और बेस्ट एक्सपीरियंस होता है 1 से 2 बजे जब हमारे कॉलर्स के साथ आप रूबरू होते हैं. इट्स रियली ब्यूटीफुल. तो शमा, आज के दिन के बारे में आपने कुछ सोच के आए हैं कुछ बताने के लिए हम सबको? एनीथिंग यू वॉन्ट टू से?
1: बिल्कुल बिल्कुल. आज 16th में है और आज ही के दिन जो ऑस्कर्स अवार्ड्स होते हैं ना, वो आज ही के दिन शुरू हुए थे और ये चीज़ें जो है ना इमेजिन किया गया था
0: अच्छा, कौन से साल?
1: 1929
0: में. और ऑस्कर अवार्ड्स आर नोन फॉर फिल्म फटर्निटी में द बेस्ट अवार्ड्स एवर, राइट?
1: तो ये सिनेमा को सेलिब्रेट किया गया और बस वहाँ से स्टार्ट हुआ एकेडमी अवार्ड्स का सफ़र. आज ऑस्कर दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म अवार्ड्स है, बट स्टार्ट हुआ था एक छोटी सी सेलिब्रेशन से. कितना अच्छा लगता है ना कि एक छोटी सी सेलिब्रेशन ने आज हमें इतना बड़ा ऑस्कर्स अवार्ड्स, जो कि पूरे दुनिया के लोग चाहते, मतलब दुनिया के जो एक्टर एक्ट्रेस हैं और जो महान व्यक्ति, वो चाहते हैं इसे लेना पाना.
0: बिल्कुल, उसके सपने देखते हैं ऑफ कोर्स. और इंडिया का पहला ऑस्कर कब मिला था आप जानती हो?
1: 1929 में स्टार्ट हुआ था.
0: नहीं, इंडिया के लिए, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए. सो फर्स्ट ऑस्कर फॉर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री वाज फॉर कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग. और आपको पता है किसको मिला था एंड वो जर्नी कैसा था? बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन मिला था फॉर द फिल्म गांधी के लिए 1982 में. रिचर्ड एटनबर्ग गांधी एंड भानु अतैया जी, वो थी हमारी फर्स्ट इंडियन टू विन एकेडमी अवार्ड 1983 में, वो भी कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए. इज़ दैट ब्यूटिफुल?
1: रियली वेरी प्राउड मोमेंट, वेरी ब्यूटिफुल मोमेंट.
0: उसके बाद तो नो लुकिंग बैक, वी हैड सो मैनी ऑस्कर्स दैट वर वन. जय हो गाने के लिए ए आर रहमान साहब.
1: और अभी RRR.
0: Of course. And so, it's just going on. And we are making the world, we are making everyone proud in the world at the platform. Wonderful, Shama. So we'll talk more. I'm here, Shama is here. And we'll be right back. Ye hai Akashwani FM Rainbow 101.9. Khubsurat gaane aa rahe hain. Aap sunye aur kahin jaiyega mat. Stay tuned.

0: Please stand by for the news from Delhi.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित करेंगे। समारोह में हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी कल देर रात नीदरलैंड्स पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। विभिन्न आयु वर्ग के लोग पारंपरिक नृत्य और संगीत प्रस्तुतियों के साथ उनका स्वागत करने के लिए एकत्रित हुए। प्रवासी भारतीयों ने भोजपुरी गीत से प्रधानमंत्री का स्वागत किया।

इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। इस सामुदायिक कार्यक्रम में भारत नीदरलैंड संबंधों, प्रवासी समुदायों की भूमिका और भारत की वैश्विक पहुंच पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर ₹3 प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क ₹23 से घटाकर ₹16.50 प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी इसे ₹33 प्रति लीटर से घटाकर ₹16 कर दिया गया है। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन पदभार ग्रहण करने के बाद आज सिक्किम की अपनी पहली यात्रा पर जाएंगे। इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, साथ ही उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित हुई नीट परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जाँच कर रही है। त्रिपुरा में कानून व्यवस्था और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय ने एक अतिरिक्त इंडिया रिजर्व बटालियन के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने इसके गठन के लिए ₹50 करोड़ का एकमुश्त वित्तीय अनुदान और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ₹30 करोड़ तक की राशि मंजूर की है। मुख्यमंत्री माणिक साह ने आशा कार्यकर्ताओं के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश और देश के कई अन्य हिस्सों में हुई तेज वर्षा तूफान से हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। मौसम विभाग ने आज झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू चलने का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कोंकण और गोवा में भी दिन भर गर्म और उमस भरे मौसम की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा की संभावना जताई है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के

एकजुट होने का आह्वान किया है। इस वर्ष का विषय है डेंगू नियंत्रण के लिए सामुदायिक भागीदारी, जांच करें, साफ करें और ढकें। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष डबल सेमीफाइनल में आज सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशिया के नूर इजुद्दीन और गोसीफे की जोड़ी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वेलकम बैक। और आप सुन रहे हैं नमस्ते हेलो आदाब, ये आकाशवाणी का 101.9 FM। दोस्तों आज 16 मई है और आज के दिन थोड़ा सीरियस भी है क्योंकि ओजोन मोमेंट, ये थोड़ा सीरियस है बट बहुत इम्पॉर्टेंट मोमेंट की बात करते हैं। हाँ, साइंटिस्ट ने एक डिस्टर्बिंग चीज़ नोटिस की कि अर्थ के ऊपर जो ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे वीक हो रहा है। सो ये सिर्फ एक साइंटिफिक रिपोर्ट नहीं थी, ये नेचर की तरफ से एक साइलेंट वार्निंग थी। सोचो ज़रा, जो हवा हम में हम सांस ले ले रहे हैं, जो सन की हार्श रेस से हमें प्रोटेक्ट करता है, वो ही शील्ड अगर कमज़ोर हो जाए तो लाइफ कितनी वल्नरेबल हो सकती है। और इसी मोमेंट ने दुनिया को हिला कर रख दिया। लोगों ने पहली बार सीरियसली सोचा कि डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट है बट नेचर को इग्नोर करके नहीं। दोस्तों नेचर हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, नेचर है तो हमारी ज़िंदगी है, हम हैं, तो हमें नेचर का प्रोटेक्शन करना ही होगा हमसे पहले। तो उसके बाद ही दुनिया ने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को सीरियसली लेना स्टार्ट किया सच, क्योंकि समझ आया अगर नेचर सेफ नहीं है तो हम भी सेफ कहाँ हैं, ये मैंने पहले भी कहा। और यहीं से एक अवेयरनेस जर्नी स्टार्ट होती है जो आज भी कंटिन्यू है। लेट्स स्टार्ट। इसी के साथ हम सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना।
1: మీ మార్కెట్ రిటర్న్స్ ను వేగంగా పెంచుకోవడానికి మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారా? ఎల్ఐసి ఇండెక్స్ ప్లస్ నెలకి కేవలం 2,500 రూపాయల ప్రీమియం తో ఫ్లెక్సీ స్మార్ట్ గ్రోత్ ఫండ్, ఇది నిఫ్టీ 50లోని స్టాక్స్ లో పెట్టుబడి పెడుతుంది, లేదా ఫ్లెక్సీ గ్రోత్ ఫండ్, ఇది నిఫ్టీ 100 పై దృష్టి సారించి అభివృద్ధిని లక్ష్యంగా ఉంచుతుంది. ఎల్ఐసి హర్పల్ ఆప్కే సాత్.

वेलकम बैक 101.9 FM रेनबो पे आपका स्वागत है। तो कॉफ़ी लवर्स, आपके लिए भी आज का दिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप जानते हैं आप जो कॉफ़ी पीते हैं वो कैसे कैसे इन्वेंट हुआ कि इतनी जल्दी और इतनी फास्ट बन जाती है। एक छोटा सा सवाल आपसे भी मैं पूछूंगी कि आपने जब सुबह सुबह जल्दी कॉफ़ी बन जाती है और इतनी फास्ट जो मैं बोल रही हूँ और इतनी स्ट्रॉन्ग और परफेक्ट टेस्ट भी कैसे दे जाती है, सोचा है ज़रा? पहले के टाइम पे कॉफ़ी बनाना इतना इजी नहीं था, ना जल्दी बनती थी ना इंस्टेंट फील मिलता था, टाइम भी लगता था, इफर्ट भी और पेशेंस भी। और फिर आता है 1884, वहाँ एक इंसान सोचता है क्यों ना कॉफ़ी को ऐसा बनाया जाए जो फास्ट भी हो और स्ट्रॉन्ग भी। बस इसी सिंपल से थॉट से एक रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है और यहीं से दुनिया को मिलता है एस्प्रेसो मशीन का कॉन्सेप्ट। और पता है लिस्नर, ये आइडिया दिया था एक इटालियन इन्वेंटर ने, एंजेलो मोरियोंडो ने। उन्होंने सोचा कि कॉफ़ी लवर्स को ऐसा एक्सपीरियंस मिले जहां कॉफ़ी मिनट्स में रेडी हो जाए और हर सिप में फ्रेशनेस और एनर्जी और मज़ा ही आ जाए। आज जो हम क्विक कॉफ़ी ब्रेक बोलते हैं ना, ये सुबह की पहली स्ट्रॉन्ग सिप जो मूड सेट कर देती है, उसके पीछे किसी ना किसी इंसान का विज़न है, आइडिया है और इफर्ट छुपा होता है, और यही बात सबसे ब्यूटीफुल है। सो लिसनर, ये बिल्कुल सही है ना, हमारी ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ों के पीछे किसी बड़े दिमाग की सोच होती है। और

उनकी मेहनत हमें आज के पल को और इजी और कंफर्टिंग बना देता है, राइट? और अब इस कोजी सी कॉफी वाली फीलिंग को थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि कुछ स्टोरीज वर्ड से नहीं, म्यूजिक से और बेटर होती है। सो लेट्स मूव इन टू आवर नेक्स्ट ब्यूटिफुल ट्रैक।

वेलकम बैक दोस्तों। आई होप आपने उस सॉन्ग को सिर्फ सुना नहीं, फील भी किया होगा। और कॉफ़ी की तरह म्यूज़िक भी एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो इंस्टेंटली मूड चेंज कर देता है। और अब लिसनर, जब हम इतनी सारी इनोवेशन की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना फिर हम बात करते हैं एक प्यारे से पीस के बारे में। आपको पता है आज 16th में है और आज है इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस। अब जरा एक सेकेंड के लिए सोचिए, हम सब कितने अलग हैं ना। हमारी लैंग्वेज अलग है, सोच अलग है, कल्चर अलग है, लाइफ जीने का तरीका भी बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी हम सब एक ही दुनिया शेयर करते हैं, राइट? तो क्वेश्चन है आप लोगों से लिसनर्स, जब हम लोग अलग होकर भी एक साथ रह सकते हैं, तो फिर टकराव क्यों, शोर क्यों और ये दूरियां क्यों? इसी थॉट को लेकर यूनाइटेड नेशन ने ये डे बनाया ताकि हमें याद रहे कि पीस कोई डिस्टेंट आइडिया नहीं है। पीस वही है जो हम अपने डेली बिहेवियर में चूज करते हैं। और ऑनेस्टली, पीस का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कोई फाइट ना हो, बल्कि पीस का मतलब है जब हम किसी की बात को बिना जज किए सुन लें, जब हम डिफरेंसेस को थ्रेट ब्यूटी समझें, और जब हम मैं सही हूँ से ज़्यादा समझना ज़रूरी है वो समझ लें, तो हमारी जो चीज़ें हैं ना वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से होती है। इसलिए ये इंटरनेशनल पीस डे भी 16 मई को आता है, हमें ये याद दिलाने कि हमें साथ रहना है, वो भी पीस के साथ, और दुनिया को हमें खुश रखना है, खुद के बारे में भी सोचना है और लोगों के बारे में भी, लेकिन लोगों से पहले खुद को सोचना है। तो चलिए इसी के साथ हम सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक। स्टे ट्यून्ड।

जाता है ना रात को सोया जाता है उलझा रहता हूँ यादों में मुझको बड़ा रोना आता है भूल गया मैं खाना पीना जिंदगी को हंस के जीना तेरे चक्कर में मेरा एक बोतल रोज का पीना।

वेलकम बैक दोस्तों, और स्टूडियो में हो रहे हैं 12:45:22। तो दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 101.9 FM। दोस्तों आज हम बात करते हैं कुछ पुरानी यादें, जैसे आपके स्कूल की यादें क्या होती थी, जब आप कौन सी म्यूजिक सुनते थे जो आपको अभी भी वो स्कूल में ले जाया करते, उस याद में जहाँ पर आप अक्सर उस पुरानी यादों में खो जाते, अपने दोस्तों के बीच या फिर टीचर की यादें या फिर उनकी डांट और दोस्तों के साथ मस्तियाँ या फिर कुछ ऐसा जो आपका पहला क्रश हो, ये सारी चीज़ें स्कूल से ही शुरू होती है। वो यादें कभी वापस नहीं आती। वो कौन सा ऐसा सॉन्ग है जिसे आप सुनते ही उस पुरानी यादों में खो जाते हैं, और दोस्तों दिल करता है कहीं ना कहीं वो स्कूल फिर से आ जाए, वो ज़माना फिर से आ जाए। लेकिन जब हम स्कूल में होते हैं ना, तो हमें जल्दी बड़े होने का बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती है, जल्दी से जल्दी हमें सब कुछ मिल जाए। लेकिन वो दिन जब छूट जाती है ना, तो फिर अफसोस ही रह जाती है, क्योंकि वो दिन हमारा सबसे गोल्डन डे होता है, क्योंकि वो दिन वापस नहीं आते। चाहे आप दुनिया की सारी चीज़ें पालो, लेकिन वो स्कूल डे, वो टीचर की डांटे, वो दोस्तों के साथ मस्तियाँ और अपने क्रश, ये सारी चीज़ें वहीं की वहीं रह जाती है। और हम फिर से बड़े होकर के, जॉब है, बहुत सारी टेंशन है, बहुत सारी, इतने सारे हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि उस दिन पे हम जा ही नहीं पाते हैं। इसी के साथ हम सुनेंगे एक प्यारा सा सॉन्ग जिसे हम लेते हैं,

0: That's an electrifying music, of course. Well, welcome back. This is Akashwani Hyderabad FM Rainbow 101.9. Rainbow ke saath hai life rangin. Aapki, aapka din, aapka shaniwar jo rangin ban raha hai. Mere saath aur yahan pe mere saath Shama hai. And well, Shama is super cool. She's trying to do her best. She's trying to, you know, pick up and become an RJ. And yes, I wish her all the best. She's doing a great job. And abhi 5 minute baki hai. Kis liye? Arey? आपके साथ मेरे साथ रूबरू होने के लिए. एंड यस, बातों की जुगलबंदी, गानों का सिलसिला जारी है. व्हाट्सएप के लिए सारे मैसेजेस आपने भेजे हैं. वेल, हमने एक इंटरव्यू किया था, लाइव इंटरव्यू विद स्किल डेवलपमेंट एक्सपर्ट ट्रेनर मिस्टर नूर. एंड उन्हीं के लिए भी बहुत सारे मैसेजेस आए हैं. एंड यस, आई विल फॉरवर्ड ऑल ऑफ देम टू हिम सो दैट वी गेट द आंसर्स. एंड बसवंत जी मैसेज भेज रहे हैं, बसवंत राय देशमुख सर. एंड वो कहते हैं, जय श्री जी, नमस्ते रेनबो के लिसनर्स को, नमस्ते. वेरी कूल समर आई एम स्पेंडिंग इन माय होम टाउन फ्रॉम 11 to 3 PM. वी फील इट्स हॉट एंड इट्स हार्ड इवनिंग. नाइट इट्स वेरी पीसफुल एंड प्लेजेंट. माय हाउस इज 150 इयर्स ओल्ड. नो सीमेंट इज यूज्ड, ओनली चूना. सर, दैट्स अमेजिंग. लास्ट वीक आई वाज इन हैदराबाद, इट वाज बॉइलिंग. इंडीड, इट इज वेरी हॉट राइट हियर. वी आर नॉट कमिंग आउट अनलेस इट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी. And yesterday, every day, I'm listening to FM Rainbow with all new RJs. New RJs are trying to do their best. Yes, they're trying to do their best. Indeed. You know, and they're doing it really well. Old is gold. Well, we will, that's there, of course. But we are always here to train our new RJs, aren't we? And yes, lot of RJs are also coming up. So let's encourage them. Yes, we are also here. That is there. Baswanji, Shantinagar, Masabtang. Thank you for sharing such beautiful thoughts, Baswanji. हमारे सरवर अली साहब यहाँ पे तैयार अपने रेडियो के साथ. फिलिप्स का एक बहुत ही पुराना रेडियो यहाँ पे है एंड कसेट्स है. एंड थैंक यू सरवर अली साहब, रेडियो शौकीन हमारे सरवर अली जी. एंड यहाँ पे हमें ऑडियो मैसेजेस भी भेज रहे हैं. वाह वाह वाह. और उनके चार लाइन, हकीकत मोहब्बत की जुदाई होती है. वाह वाह. मैं खुद वाहवा बोलूं या शमा? इरशाद भी नहीं बोला आपने, वाहवा कहूं?
1: वाह.
0: हकीकत मोहब्बत की जुदाई होती है, कभी कभी प्यार में बेवफाई होती है. हमारे तरफ हाथ बढ़ाकर तो देखो, हमारे तरफ हाथ बढ़ाकर तो देखो, पता चलेगा कि दोस्ती में कितनी सच्चाई होती है. बिल्कुल, थैंक यू सो मच, हाथ बढ़ा दिया. एंड आपका नाम तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन बिल्कुल अपना नाम बताइएगा एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू टेक योर नेम ऑन एयर. मैसेजेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन वक्त की पाबंदी, 1 o'clock से वील हैव हेलो रेनबो, जहाँ आप मेरी बातें कम, आपकी बातें ज़्यादा, आपके मनपसंद गाने ज़्यादा, एक्चुअली आपके ही मनपसंद गाने. मेरा तो कोई चॉइस ही नहीं रहता है, 1 to 2, है ना. तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे हेलो रेनबो शो के साथ, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक एंड विल बी राइट बैक. स्टे ट्यून्ड.

हेलो रेनबो, जब कोई फ़ोन पिकअप करता है क्या बोलता है? हेलो। वेल, हम भी यहाँ कहते हैं हेलो रेनबो, लेकिन यहाँ पर ना कौन फ़ोन कर रहा है मुझे नहीं पता। कहाँ से आप फ़ोन कर रहे हो बिल्कुल नहीं पता। अंदाज़ा भी नहीं है कि हम यहाँ जो रूबरू हो रहे हैं, किस दुनिया के कोने से आप हमें फ़ोन कर रहे हैं। वेल, ये हर दिन 1 o'clock to 2 o'clock होता है हमारा फ़ोन इन प्रोग्राम। जी हाँ, दिस इज़ लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम। आई हैव नो क्लू फ्रॉम वेयर यू लिसनिंग टू मी। अगर आप न्यूज़ ऑन एयर ऐप डाउनलोड किए हैं देन यू कैन लिसन टू मी फ्रॉम एनी वेयर इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया से आप मुझे सुन सकते हैं। मुझे ये क्या, बहुत सारे न्यूज़ बुलेटिन आप सुन सकते हैं, बहुत सारे लैंग्वेजेस में आप सुन सकते हैं, सारी फ्रीक्वेंसीज, मोर देन 1050 फ्रीक्वेंसीज यू कैन लिसन टू इट ऑन न्यूज़ ऑन एयर ऐप। अभी बताइए, मुझे फ़ोन करने का नंबर बताए आपको? बताती हूँ मैं, 0402323-0030, 2970-47175। तो 3 लाइन्स क्यों? क्योंकि हमें ना आपको इंतज़ार कराना बिल्कुल पसंद नहीं है। वी डोंट वॉन्ट यू टू वेट। सो लेट्स गेट ऑन द टॉपिक। आज का टॉपिक, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस डे है, यानी आज के दिन ग्लोबली ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। एंड टुडे इज अ डे वेयर वी हैव टू लिव टुगेदर, यानी साथ में, एंड लिव इन पीस, शांति से, शांति से साथ में रहना है, अमन और शांति के साथ। तो ऐसी कौन सी कहानी है जो शायद किसी को जागरूक कर दे अपनी टुगेदरनेस वाली कहानी? मतलब अगर कोई जद्दोजहद हो रही है किसी के बीच में, आपने जाके सुलह किया और आपके सुलह करने से चीज़ें बिगड़ी नहीं, बन गई है, बिगड़ती हुई चीज़ें बन गई है। तो आई वॉन्ट यू टू इंस्पायर सम वन आउट देयर, आपकी कहानी शेयर करके आप हमें बताइए कि कौन सी ऐसी बात थी, कौन सा ऐसा मौका था, कौन सा ऐसा इंसिडेंट था जहां आपके इंटरफेरेंस से, आपके आपकी अच्छाई से आपने कोई बिगड़ी हुई बात बना दी, या किसी के बीच अनबन हो रही थी आपने वो सुलह कर दिया। क्योंकि आज है अंतरजातीय साथ में रहने का और शांति से रहने वाला दिन। चलिए ये सारी बातें सीखते हैं हम। कॉल करने का बिल्कुल अभी मौका है, एंड 2323-0030, 2323-4821, 2970-4715। बहुत ही खूबसूरत गाना प्ले कर रही हूँ, हम दोनों फिल्म से।

बिल्कुल दिल अभी नहीं भरा, भरने वाला है क्योंकि आपकी बातें तो बाकी है. वी आर वेटिंग फॉर योर कॉल ऑन 2323-0030, 2323-4821, 2970-4715. दैट इज़ आर कॉलिंग नंबर. इसके अलावा लॉट ऑफ व्हाट्सएप मैसेजेस आर कमिंग. अगर अगर आप यू नो लंच में बिजी हो या यू नो यू आर अ लिटिल बिजी, यू कैन व्हाट्सएप ऑन 9140-2323-4822. दैट्स आवर व्हाट्सएप नंबर. ऑल राइट, एक और बहुत ही हसीन गाना. लेकिन उससे पहले अपना टॉपिक, इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस. ये पीस कब डिस्टर्ब हो जाता है, कब गुस्सा आ जाता है? तब, हाँ वो भी है, जब कोई आपको समझ नहीं पाता, जब आपको मतलब कैसे भी करके आपकी बात समझानी है और कोई सुनने वाला नहीं है, तब देयर इज नो पीस. जब हमारे पर्सपेक्टिव्स अलग होते हैं, हमारा नज़रिया अलग होता है, तब जाके

गुस्सा होना, फिर नाराज होना, फिर जद्दोजहद, ये सारी बातें क्या इम्पोर्टेंट है? कभी कभी अच्छी बातें होने के लिए हमेशा ना खत से भी सुलह किया जा सकता है ना? चलिए मेरी बातें रखते हैं और साइड में, लेकिन आपको एक अच्छा सा गाना सुनाते हैं। ये खत के बारे में है, रफ़ी साहब की आवाज़ में। और ऐसे मौके बहुत सारे आए होंगे आपकी ज़िंदगी में जो खत लिखकर आप सुलह किया है। ये शायद ज़्यादातर ना प्यार में भी हो सकता है। प्यार मतलब एक ही तरह का प्यार नहीं है, मम्मी पापा है ना, या वो बॉर्डर में जो बैठा है ना वो सोल्जर, वो प्यार से लिखता है अपने घर पे जो खूबसूरत खत, जो प्यार भरा होता है। कोई भी खत हो, इट्स ब्यूटीफुल। इवन जस्ट पोस्टेड नोट्स जो आप लिखते किसी के लिए, दैट इज़ ऑल्सो नाइस। कभी कभी कोई गुस्सा होता है ना, बात नहीं करना चाहता, तब कोई एक लंबा सा

0: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद एफएम रेनबो 101.9। लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन। हेलो रेनबो।
1: हेलो, नमस्ते जयश्री जी।
0: नमस्ते, आपका नाम?
1: मेरा नाम मुमताज है।
0: मुमताज जी कैसे हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं?
0: सब बस ठीक। आप बताइए, आज है इंटरनेशनल डे साथ में रहने का और यू नो सुलह करने का, पीसफुलनेस के बारे में। तो आपने कभी सुलह किया किसी के बीच?
1: कितने देर से कॉल कर रही है, आप उठा रहे नहीं।
0: बिल्कुल
1: शुरू
0: बिल्कुल नहीं नहीं
1: हो
0: यहाँ पे टेक्निकल रीजंस के लिए है, तो आप हमारे पहले कॉलर।
1: हाँ, शुक्रिया बहुत।
0: जी बोलिए।
1: आपको भी बहुत प्यार भरा सलाम, और
0: जी
1: शेर खान भाई को भी बहुत मेरी तरफ से सलाम। एक बार उन्होंने अपनी माँ के बारे में बोले थे, उन्होंने दूर करते नजदीक नहीं करते, बहुत बुरा लगा।
0: कौन बोले?
1: इंशाल्लाह शेर खान भाई।
0: अरे
1: शेर
0: हाँ
1: खान
0: ओके।
1: तो उनको नाबीना है ना, उन्होंने ऑनलाइन उनकी माँ नजदीक नहीं करे कहते बचपन से, बुरा लगा। इंशाल्लाह अपनी दुआ से उनको कोई ना कोई प्यार में माँ की मोहब्बत जरूर देंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला।
0: बिल्कुल।
1: और टॉपिक के बारे में है, जब हम किराए के थे, एक पड़ोसी थे, वो नई नई शादी होके थी, वो अपने शौहर के साथ पति के साथ नहीं रहना चाह रही थी बिल्कुल भी।
0: अच्छा।
1: तो हम हमारे दीदी के बच्चे समझा, बहुत समझा, नहीं ऐसा नहीं करना, शादी होने के बाद में जिंदगी खराब हो जाती, बहुत बुरी बात है, ये गलत है, नहीं करना था, बहुत
0: जी
1: समझाए। अब
0: जी
1: तो शुक्र है ऊपर वाला का, अब अच्छे है, मियाँ बीवी बच्चे भी बड़े बड़े हो गए उनके, तो हमको खुशी ही दी, उनको दूर होने नहीं दिए, बहुत समझाए।
0: सही बात
1: और
0: है।
1: एक गाने की रिक्वेस्ट है जैसे
0: बोलिए
1: कि
0: ना, कौन सा गाना?
1: तो मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता किनारा मिल गया होता, अगर वो नगर नहीं मिला तो। और एक ये गाना है ताजमहल का, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। दोनों
0: बिल्कुल
1: कौन सा गिफ्ट लेकर,
0: बिल्कुल
1: बहुत बहुत
0: मैं
1: शुक्रिया
0: कोशिश
1: आपका
0: करती
1: जवाब
0: हूँ।
1: के
0: हाँ,
1: बारे
0: मैं
1: में।
0: जो वादा किया बिल्कुल प्ले करूंगी रफी साहब की आवाज में। हाँ,
1: अच्छा, तो वो नहीं है क्या वो
0: थैंक
1: गाना, मुझे
0: थैंक।
1: तेरी मोहब्बत का
0: मैं
1: सहारा
0: वो भी
1: मिल गया।
0: ढूंढती हूँ, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा। हाँ
1: ठीक है, शुक्रिया।
0: ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। ऑलराइट ठीक है, और भी कॉल्स लेंगे हम, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक एंड विल बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड। दिस इज आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9, रेनबो एड्स कलर्स टू योर लाइफ।
2: తెలంగాణ ఆవిర్భావం తర్వాత రాష్ట్రం మొదటిసారిగా జనాభా లెక్కింపునకు సిద్ధమవుతోంది. మొదటి దశ జనగణన ఏప్రిల్ 26 నుంచి జూన్ 9 వరకు, మే 11 నుంచి జూన్ 9 వరకు జరిగే హౌస్ లిస్టింగ్ ఆపరేషన్ ఇంటింటి సర్వేలో ఎనుమరేటర్ అడిగే ప్రతి ప్రశ్నకు మీ కుటుంబ వివరాలు, మీ ఇండ్ల సమాచారం ఇవ్వటం పౌరులుగా మన బాధ్యత. అలాగే స్వీయ గణన ఐడిని కూడా ఎనుమరేటర్ కు అందజేయండి. డైరెక్టర్ ఆఫ్ సెన్సస్ ఆపరేషన్స్ తెలంగాణ శ్రీమతి భారతి హోళీకేరి గారు ఏమంటున్నారంటే,
3: మీ వివరాలు గోప్యంగా ఉంచబడతాయి. మన జనగణన మన వికాస, మన జనగణన మన అభివృద్ధి.
0: వెల్కమ్ బ్యాక్, ये है आकाशवाणी हैदराबाद एफएम रेनबो 101.9। हमारे कॉल्स लगातार आ रहे हैं। वेल, टॉपिक है इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस, साथ में शांति के साथ कैसे रहें, ये बात है। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसे जद्दोजहद होती रहती है जो आप सुलह करते रहते हैं, तो मुझे जानना है कि आपने कौन सा ऐसा प्रॉब्लम सुलह किया। वेल हेलो रेनबो।
4: हेलो रेनबो, जय श्री गारु।
0: नमस्कार अंडी, मैं पेरू
4: రమణయ్యమ్మ.
0: రమణయ్య గారు సారీ, ఇప్పుడే లైన్ కట్ అయిపోయింది, మళ్ళీ కలిసింది, చాలా సంతోషం. ఎలా ఉన్నారు?
4: బాగున్నానమ్మా.
0: మీ ఆరోగ్యం?
4: పర్వాలేదు, చాలా బాగుంది.
0: మంచిది మంచిది. మీరు
4: దేవుడు నడిపిస్తాను. చెప్పమ్మా.
0: ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి మీరు ఎంతో కుటుంబాలని చూసుంటారు, చాలా గొడవలు అయి ఉంటాయి, మీరు ఎప్పుడన్నా వాళ్ళ మధ్యలో వెళ్ళి లేదమ్మా ఇది మంచి చెడు అలా చెప్పిన సందర్భాలు ఏమన్నా?

0: वेलकम बैक. इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस, यानी साथ में रहना है, शांति से रहना है, सुकून से रहना है, हड़बड़ी नहीं करना है और मतलब दिमाग ठंडा रखना है. यही है आज का कॉन्सेप्ट और आज इंटरनेशनली ग्लोबली यही सेलिब्रेट हो रहा है. लेट मी सी हुज ऑन द लाइन. हेलो रेनबो.
1: हेलो रेम्बो, जय श्री जी. गुड आफ्टरनून
0: गुड
1: आदाब.
0: आफ्टरनून शेर खान जी. आदाब, कैसे हैं आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है और सभी भाई बहनों को तो भी प्यार भरा सलाम मेरा. अल्लाह से दुआ है आपको सभी को खुश रखे, आबाद रखे, सेहतमंद रखे. और मुमताज बाजी को भी सलाम है, उन्होंने याद करे, सलाम करे, वालेकुम सलाम कहता हूँ. अल्लाह उनको भी हमेशा खुश रखे.
0: जी बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू सो मच इतनी अच्छी बातों के लिए. आपने कभी किसी के कहीं दखल अंदाजी दी और अच्छे के लिए दी और कभी कुछ ऐसा अच्छा हुआ?
1: जी हाँ, मेरे को हमेशा मतलब बोलते हैं ना, सच कड़वा होता है, तो मुझे हमेशा कड़वा बोलने की आदत है. मैं मीठी बातें नहीं करता, मीठी बातें करता
0: जी.
1: तो वो भी एक मतलब ज्यादा मीठा भी बोलना डायबिटीज की तरह खतरनाक हो जाता है. जी तो मीठा तब बोलो, सच्चाई और अच्छाई को मीठे अंदाज से बोलो, अच्छे अंदाज से बोलो. अगर सच है तो उसको बोलो, उसको कड़वा भी लग रहा है तो उसको मीठे अंदाज में समझाओ, अच्छे अंदाज में समझाओ, सुलह मशवरा कराओ.
0: जी.
1: तो मैंने ये कराया है. हमारे बड़े भाई थे
0: जी.
1: बड़े भाई है
0: जी.
1: और उनकी बीवी है, तो उनके बीच में बहुत सारा झगड़ा होता था. इतना झगड़ा होता था कि बाद डिवोर्स तक आ गई थी.
0: अरे बाप रे.
1: तो मैं उनमें हमेशा दखल देता रहता था. मेरे बड़े भाई, हालांकि मैं भाभी के फेवर में था, बड़े भाई का दिमाग जरा गर्म था और कुछ अलग तरह का था.

0: हाँ तो वो मेरे से दुश्मनी रखते थे कि वो मेरे को भी उनके चपेट में ले लेते थे, लेकिन मैं
1: जी
0: बोलता था नहीं, मैं सच का साथ दूंगा, जो है वो हक बोलूंगा, सच बोलूंगा,
1: सही
0: जो भी है।
1: है
0: तो
1: या
0: उनमें उनमें सुलह कराता था, मैं भाभी को भी समझाता था, भाभी को भी कुछ पढ़ाता था कुरान वगैरह, फिर नमाज के रास्ते पे जाने की उनको ये दिया। तो उनमें खुद में कुछ चेंजेस आ गए और जो डिवोर्स का मसला था उनका वो सॉल्व हो गया। आज हंसी खुशी से चैन और सुकून से उनका जीवन गुजर हो रहा है।
1: वंडरफुल वंडरफुल, बहुत अच्छी
0: जी
1: बात
0: हमारे
1: है।
0: बड़े भाई मुझे हमेशा दुश्मन की नजर से, आज भी बात नहीं करते वो मेरे से, और जो भाभी थे वो जो मुझे अपना मानते थे, जो मेरे मशवरे पे उनका सब कुछ अच्छा हो गया, तो आज वो भी मेरे से बात नहीं करते।
1: अरे नहीं,
0: हाँ लेकिन
1: ऐसे
0: मुझे
1: बहुत
0: इससे कोई
1: सारी
0: फर्क
1: चीजें
0: नहीं
1: हैं
0: पड़ता, वो
1: हमारे।
0: नेकी कर दरिया में दाल, काम अल्लाह के लिए करना है, किसी मतलब या मफाद के लिए किसी से कोई तालमेल नहीं रखना है।
1: जी, ऐसे बहुत सारे रिश्ते हैं शेर खान साहब, जो मैं दिल से अभी कह रही हूँ। ऐसे बहुत सारे
0: बिल्कुल
1: अपने लोग हैं जो दूर हो जाते हैं, और
0: बिल्कुल
1: ऐसी सिचुएशन में हम कुछ कर नहीं पाते। हम इतना ही
0: कुछ
1: करते हैं,
0: कर
1: उनके लिए
0: नहीं
1: दुआ
0: पाते,
1: करते हैं, और
0: बिल्कुल
1: जब
0: वही।
1: वक्त
0: मैं भी
1: आएगा।
0: अभी मैं वो जो मुमताज बाजी बोल रहे थे, मेरे मम्मी
1: जी
0: के लिए, मेरी मम्मी जिंदा है लेकिन मेरे से बिल्कुल मोहब्बत नहीं करते, मुझे अपने पास भी नहीं रखते। मैं यहाँ पे पापा के साथ, उनकी सेकंड फैमिली के साथ हूँ मैं यहाँ पे।
1: जी मैं समझ
0: रमजान में
1: सकती
0: भी
1: हूँ।
0: मैं जाता हूँ तो कोई चचेरे भाई के वहाँ, किसी दोस्त के वहाँ, वहाँ
1: जी
0: जाके आता हूँ, लेकिन मम्मी वहाँ पे हुए, हमारे अम्मी है लेकिन वो
1: जी
0: हमको रखना भी पसंद नहीं करते, और 4 दिन 8 दिन मेहमान बन के गए तब भी वो हमारे साथ बदसलूकी करते, तो
1: जी
0: ये
1: लेकिन
0: बहुत
1: आप दिल
0: अफसोस
1: छोटा
0: होता है,
1: मत
0: एक दुख
1: करें,
0: होता है जिंदगी में
1: आप
0: हमेशा।
1: बिल्कुल दिल छोटा मत करें। आप दुआ करते रहिए, और जब वक्त आएगा सब ठीक होगा। मेरी जिंदगी में भी
0: बिल्कुल
1: बहुत कुछ
0: बिल्कुल,
1: हो रहा
0: हमको
1: है,
0: ही
1: लेकिन
0: सबर करना चाहिए, बस अपने को अपना कर्म
1: सबर।
0: वाला अमल वाला ये रास्ता जो है ये नहीं छोड़ना, कितनी भी कठिनाइयां आ जाए जीवन में, कितने भी कुछ भी आ जाए, हमको अल्लाह के लिए ही जीना है, अल्लाह के लिए ही मरना है, और हर अमल हर कर्म उसके लिए ही करना है। भला
1: सही
0: ये हमारे साथ कोई भी भला करो या बुरा करो, हमको उसका कोई उसके साथ कुछ नहीं रखना है, हमको बिना भूल नहीं रखना है।
1: बिल्कुल
0: और ये
1: सही
0: अल्लाह ने
1: बात।
0: मुझे सिखाया, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये मुझे जिंदगी से सीखने मिल रहा है, ये अंदर मेरे अल्लाह ने बात रखी है, अच्छी
1: जी
0: बात है, अगर ये नहीं होती तो शायद मेरी जिंदगी नहीं गुजरती थी सही तरह से।
1: सही बात है। अभी आपके लिए
0: हाँ
1: ना
0: दुखों में
1: एक
0: भी
1: बहुत ही खूबसूरत सा
0: मुस्कुराना
1: गाना
0: सिखा
1: मैं
0: दिया
1: प्ले।
0: अल्लाह ने मुझे, हालांकि मैं रोज रोता हूँ, दुख में रहता हूँ, लेकिन फिर भी मुस्कुराता हूँ और
1: बिल्कुल
0: खुश
1: नहीं
0: रहने की
1: रोना
0: कोशिश
1: है,
0: करता हूँ
1: बिल्कुल
0: हमेशा।
1: मुस्कुराना है, बिल्कुल नहीं रोना है, सही वक्त का
0: बिल्कुल
1: इंतजार करना है। अपने हैं, अपने
0: बिल्कुल
1: पास वापस आएंगे, है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: चलिए,
0: और
1: आपके
0: उसमें
1: लिए एक
0: क्या
1: बहुत
0: है,
1: ही
0: जो भी
1: हसीन
0: है
1: गाना प्ले
0: जरूर
1: कर रही हूँ
0: जरूर
1: मैं।
0: मिलेगा हमको, यहाँ नहीं मिला तो वहाँ मिलेगा कुछ उसका अजर जरूर।
1: हाँ,
0: हमको तो अपनी नीयत साफ रखना है, बस नीयत साफ तो
1: बस
0: मंजिल आसान हो जाएंगी,
1: बस सही बात है।
0: इसी कोशिश में रहना है, क्या है बस कोशिश करना है हमको। हम कंप्लीट परफेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो
1: कोई
0: कुछ भी
1: नहीं
0: नहीं
1: है
0: हूँ।
1: शेर खान साहब, परफेक्ट तो कोई नहीं है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: आप खुश रहिए और ये खूबसूरत गाना सुनिए, और उन सबको जो भी आपसे बात नहीं कर रहे, जो भी आपको दुखाए दिल, उन सबको दुआ भेजिए आप।
0: बिल्कुल बिल्कुल, वही दुआ करते हैं, अल्लाह हिदायत दे दे
1: ठीक
0: उनको।
1: है। जी, खुदा हाफिज।
0: जी जी
1: वेल फैमिलीज, यू नो व्हाट, द टफेस्ट बैटल्स आर विद आर लव्ड वंस, विद आर फैमिलीज, एंड व्हेन दीज बैटल्स हैपन यू गेट टायर्ड, यू गिव अप, बट डोंट स्टॉप गिविंग देम लव। इवन इफ यू डोंट गेट इट, बी अ गिवर, इट्स ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज़रूरी है कि आप प्यार देते रहें। आई नो टॉक्सिक हो जाता है, आई नो बाउंड्रीज है, आई नो यू नो एवरी थिंग, लेकिन कोई हार्मफुल वर्ड्स उनसे ना बात करें, उनको हर्ट मत करें। अगर वो आपको हर्ट कर रहे हैं, डिस्टेंस योर सेल्फ, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी लाइफ लेसन्स हैं, मैं क्या सिखाऊंगी, आप मुझे सिखाएंगे। एंड चलिए सुनते हैं बहुत ही खूबसूरत गाना। दिस इज, ये गाना गाना नहीं है, ये कुछ कहता है। ये सारी टॉपिक जो हमने बात की ना, इसके बारे में है। इसको सुनिए, एंजॉय कीजिए, ज़रा गौर फरमाइए इसके लिरिक्स पे। टेक इट अवे।

0: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 101.9। हमारे अगली कॉलर, हेलो रेनबो।
1: हेलो जय श्री हरु।
0: नमस्कार मंडी, अलाउ नरो। हेलो, अय्यो, हेलो हेलो रेनबो। गुड
1: वेरी
0: आफ्टरनून श्रीनिवास सर, हाउ आर यू?
1: वेरी वेरी गुड आफ्टरनून जय श्री
0: यस यस सर,
1: मलकपेट
0: हेलो।
1: माँ।

0: सर।
1: अच्छा, वो रमेश साहब का कट गया, बोलते
0: हाँ रमेश,
1: हम
0: किरमिश सर का कॉल
1: मीटिंग
0: डिस्कनेक्टेड,
1: वही
0: आई एम
1: वही
0: सो
1: देख रहा था,
0: सॉरी।
1: आधा घंटा हो गया, मिलता की
0: जी
1: नहीं की,
0: जी
1: मिलता की
0: थोड़ा
1: नहीं की, कुछ तो
0: टेक्निकल,
1: बोलते। बहरहाल इतना घाटी तो
0: डेफिनेटली लिटिल टेक्निकल
1: मैडम,
0: ग्लिचेस हैपनिंग, आई अपोलोजाइज,
1: या
0: बट
1: आपका
0: वी आर ट्राइंग टू सॉर्ट इट आउट।
1: टॉपिक बहुत ही अच्छा है
0: जी बताइए।
1: और आप जो गाने सुना रहे वो भी बहुत अच्छे हैं।
0: जी जी
1: हमारे
0: जी
1: बातों से वो टॉपिक से गाने सुनना अच्छा पसंद करता हूँ मैं। तो हमारे को कोई गम नहीं है, आप अगर हमारे को नहीं लिए तो भी, फोन नहीं लिए उठाए तो भी, हमारे को गानों से ये
0: दिल भर
1: पूरा
0: जाता है,
1: तबीयत खुश हो जाता है।
0: बिल्कुल।
1: तो थैंक यू वंस अगेन वेरी मच फॉर
0: नो,
1: योर
0: जी बताइए।
1: काइंड टेलिंग दी सॉन्ग्स, पुटिंग दी सॉन्ग्स इन दी। तो आपका टॉपिक के बारे में,
0: जी
1: हमारे भी लोकैलिटी में, हम भी बहुत सालों से एक ही जगह रहते हैं, तो
0: हाँ
1: हमारे को क्या है, किराएदारों को भी हेल्प करते हैं, ओनर्स को भी हेल्प करते हैं, थोड़े थोड़े लोग हम किराएदारों को हेल्प करते। अरे ना तुम वहां परसों ओनर्स को हेल्प कर रहे थे ना, वो तो मैं बोला देखो भाई सच किसका है, उसको हेल्प करते हैं, वो दूसरा कोई हमारे को उससे कोई नहीं मतलब नहीं है,
0: जी
1: नहीं अपने पैसे देने वाला है, नहीं पैसे देने वाला है।
0: जी
1: अपन जो है सो दोनों को जहां तक हो सके वहां तक हेल्प करना अपना काम है।
0: करेक्ट
1: तो एक बार
0: करेक्ट।
1: क्या हुआ, एक मियाँ बीवी थे, वो तो मियाँ बीवी ने क्या है, कंपल्सरी मेरा दोस्त उसका दोस्त था, तो
0: जी
1: उसको मर्द को भी मेरे को मिलाया, हमारा दोस्त, उसका नाम क्या है, राजा राम मोहन राय। वो कोई कंपनी में काम करते थे उन्होंने, तो उनकी मिसेज जो है सो शी वॉज वर्किंग एज ए लेक्चरर। तो रात में, रात में पी के आना उसको मारना, पी के आना मारना, ये तो मेरा दोस्त ऐसा बोला। तो मेरे को
0: जी
1: बोलते ही मेरे को ऐसा आंख पे अंगार आ गया, जाते पहले उसके घर में जाके दरवाजा मार, 7 o'clock मॉर्निंग उन्हें पुकार रहा था, मैं दनादन दरवाजा मारा, मारा कि नहीं, उन्हें निकाला, दरवाजा निकाले के दो फटकड़ मारा, फटकड़ मारे थे ना, अरे हेमंत घुस पड़ता नियम तेल तेरी ऐसी की तैसी, तू क्या कर रहा है, तू इंदुग्रह ये संगति मत
0: राइट।
1: रोज ఏడ్పిస్తున్నా మాటలు నీవి, నీ పేరుకు తగ్గట్టుగా మీరు ఏం పేరు పెట్టుకున్నారు, తీసేయండి మొదటి పేరు, ఆ పేరుకి ఎంత వాల్యూ ఇవ్వాలి మీరు ఆ మధ్య మర్చిపోతున్నారు,
0: కరెక్ట్
1: అత్యాసం మీరు
0: కరెక్ట్.
1: ఆడమని పట్టుకొని కొడతారు అంటే ఎవరికి లేవరు లేదంటున్నారా మీరు, మా లొకాలిటీ లోపల ఇటువంటి కథలు నడవద్దు, మీరు
0: కరెక్ట్
1: ఏం చేస్తావో ఏం చేద్దు, ఇంకోసారి కనుక మీ మిత్రుడు గారు కొట్టారు అని తెలిస్తే మాత్రం మీ కాళ్ళు చేతులు మళ్ళా కొట్టడానికి కూడా మీ చేతులు ఉన్నాయి, ఐస్ హౌస్ కు దాకి పోయే కన్నీ తక్ 10 దిన్ 15 దిన్ అచ్చా తా 20 దిన కే బాద్ ఖాళీ కర్కే చలే గయా।
0: अच्छा,
1: तो
0: नहीं खाली करके
1: ऐसा
0: चले गए, ठीक है, लेकिन क्या वो बदसलू की अभी भी हो रही है, ये कैसे हमें पता चलेगा?
1: नहीं, वो 20 दिन तक तो उन्हें कुछ भी नहीं करा, कुछ भी उनसे लड़ा नहीं करा नहीं, अच्छा ही था कहते वो
0: अच्छा
1: पूरा अपन इन्फॉर्मेशन लेते,
0: अच्छा
1: लेने के
0: ओके,
1: बाद ही
0: गुड गुड
1: मालूम हुआ
0: गुड।
1: कि उन्हें घर छोड़ दे के चले गया, बोल के मियाँ भी कुछ लेके गया, वो
0: जी
1: किधर गया मैं मेरे दोस्त को बता रहे, उसको पूछ रहे, उधर का भी अपन देखेंगे,
0: हाँ
1: इधर खाली करके गया वहां पर भी
0: जी,
1: जाके देखेंगे, पर अपने को क्या काम क्या है,
0: सही
1: अच्छा
0: है,
1: करना अपना काम है, ये
0: वेरी
1: तेरा
0: इम्पोर्टेंट।
1: दोस्त से बोल
0: जी
1: रहा, तेरा दोस्त तो अच्छा काम करे तो उन्हें बेचारी अच्छा जीती ना, तो
0: सही है,
1: जीती ना लेक्चरर रही, वो भी छोड़
0: बिल्कुल।
1: के ही नहीं, इसका नाम क्या है, उन्हें क्या है ऐसा, वो उसको बोले तो उन्हें जाके देख के आया, कहते देख
0: जी
1: के आने के बाद बोल रहा नहीं अन्ना अच्छे उन लोगों का लाइफ तो अच्छा गुजार रहे, बोल के
0: नाइस
1: बोला, मैं बोला
0: नाइस।
1: बहुत अच्छी बात है भाई, अच्छा है क्या, अपने को भी अच्छा है, बोल के मैं गपचुप करके छोड़ दिया। ऐसा बहुत है
0: बिल्कुल
1: हमारे को,
0: श्रीनिवास
1: चीजें
0: जी,
1: मोहल्ले में होते रहते, पैसे लिए सो वो लिए सो, वो चिट्ठियां करते, चिट्ठियां डालते, चिट्ठियों के पैसे देने का वो चलते रहता, अपन क्या कर सकते हो, इधर इधर ये कर दे के फैसला कर दे के छोड़ देते हैं, वो लगा देना देना देना उनकी बात है, ऐसा
0: सही
1: कोई
0: बात
1: घर
0: है।
1: बनने का रहते, घर बनने का रहते वो लगा के पैसे वसूल करते, उन लोगों को सर दर्दा करे 500 ले 200 ले रहे भाई, ऐसा बोल के उन लोगों को ऐसा करना, वो
0: समझ
1: तो
0: गए,
1: टैक्स
0: बिल्कुल।
1: करना ये करना उस पूरे काम जब जब करते रहते। थैंक
0: जी,
1: यू माँ, थैंक
0: थैंक यू सो मच, थैंक यू
1: यू सो
0: सो
1: मच माँ।
0: मच, थैंक
1: तो
0: यू
1: आपका
0: सो
1: टाइप
0: मच।
1: यही इससे कंसर्न, मेरे को उनसे बात करना था, कालस को कोई भी लिए तो अच्छा रहता था, मैं पूरा आपका टॉक सुना मैं, इट वाज अ वेरी नाइस टॉपिक, इट वाज देयर, सो
0: यू
1: यू
0: मीन
1: नीड अ वेरी
0: मिस्टर
1: वेरी
0: नूर इन द मॉर्निंग?
1: या वाणी मानी यस यस यस
0: या
1: पूरा
0: बिल्कुल
1: साबित सुना भाई
0: आपने सुना, थैंक यू
1: सीरियल।
0: सो मच।

0: इट वॉज अ वंडरफुल
1: एक्सपीरियंस तो क्यों ना
0: कॉन्वर्जेशन
1: भाई, वही
0: जी.
1: उसीलिए मेरे को कुछ था कि जब क्वेश्चन पूछना बोल के था मेरे को, उन्हें बोल रहे थे वो, तो वो जो समझा रहे थे उसके बारे में थोड़ा बहुत पूछना बोल के मेरे को था.
0: बिल्कुल
1: बट द थिंग इज दैट यू आर नॉट टेकन एनी कॉल, सो दैट नहीं, बीच में नहीं, आप भी थोड़े क्वेश्चन ले रहा जनरल
0: बिल्कुल बिल्कुल.
1: पब्लिक के सामने तो
0: आई
1: नहीं
0: विल
1: कर.
0: मेक श्योर आई विल इंक्लूड कॉलर्स.
1: यामा यामा संपर्क.
0: थैंक यू सर. थैंक यू सो
1: थैंक यू माँ,
0: मच.
1: थैंक यू वेरी मच माँ, थैंक
0: ऑल
1: यू.
0: राइट. बाय बाय सर. बाय बाय.
1: ओके बाय बाय माँ.
0: ओके दैट वाज श्रीनिवास सर. एंड वी हैव सम मैसेजेस राइट हियर. अश्विन जी कोठी कुशाल मार्केट से भेजते हैं 4 लाइन. मैंने देना सीखा इसीलिए नहीं कि मेरे पास बहुत कुछ है. मैंने देना सीखा इसलिए नहीं कि मेरे पास बहुत कुछ है, बल्कि इसीलिए कि मैं जानता हूँ कि कुछ न होने पर कैसा लगता है. वंडरफुल कोट. थैंक यू अश्विन जी. ऐसे ही देते रहिए प्यार और दूसरों को आपकी आपका आशीर्वाद भी. एंड अभी समय समाप्त, वक्त की पाबंदी. आई वुड जस्ट से एज आई ऑलवेज से, बी काइंड टू एवरी काइंड, बी काइंड टू एनिमल्स, एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड पुट अ वाटर बोल आउटसाइड योर हाउस या आपके बालकनी में फॉर आर कम्युनिटी एनिमल्स, बिकॉज बहुत धूप है एंड दे रियली नीड यू. दिस इज जयश्री साइनिंग ऑफ.
2: తెలంగాణ ఆవిర్భావం తర్వాత రాష్ట్రం మొదటిసారిగా జనాభా లెక్కింపునకు సిద్ధమవుతోంది. మొదటి దశ జనగణన ఏప్రిల్ 26 నుంచి జూన్ 9 వరకు, మే 11 నుంచి జూన్ 9 వరకు జరిగే హౌస్ లిస్టింగ్ ఆపరేషన్ ఇంటింటి సర్వేలో ఎనుమరేటర్ అడిగే ప్రతి ప్రశ్నకు మీ కుటుంబ వివరాలు, మీ ఇండ్ల సమాచారం ఇవ్వటం పౌరులుగా మన బాధ్యత. అలాగే స్వీయ గణన ఐడిని కూడా ఎనుమరేటర్ కు అందజేయండి. డైరెక్టర్ ఆఫ్ సెన్సస్ ఆపరేషన్స్ తెలంగాణ శ్రీమతి భారతి హోళీకేరి గారు ఏమంటున్నారంటే,
3: మీ వివరాలు గోప్యంగా ఉంచబడతాయి. మన జనగణన మన వికాసం, మన జనగణన మన అభివృద్ధి.

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: शिक्षा की जीवन में भी जरूरत है, समाज जीवन में भी जरूरत है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अपने से ऊपर का जो स्टूडेंट है, हमसे ज्यादा होशियार है, उसको कहो मैं 5-10 मिनट मेरे साथ बैठो, मुझे बताओ मैं ये सोच रहा हूँ ठीक है क्या, तुम करेक्ट करो।
0: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: हेलो हेलो हेलो हेलो माइक टेस्टिंग।

0: FM Rainbow 101.9
1: Chilimanu parimalam manasukku tholivaram.

0: आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: आपके परिवार के जो बड़े लोग हैं उनके साथ परीक्षा पे चर्चा पढ़ने के लिए कहिए, उसकी चर्चा कीजिए, और कोई मंत्र है तो खास लाइन करके बताइए, देखिए ये पीएम ने ये कहा है तुम पढ़ो।
0: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: आरोग्य जीवनं, कॉलन कैंसर लक्षणालु, చికిత్స అంశం గురించి సర్జికల్ ఆంకాలజిస్ట్ డాక్టర్ సింహాద్రి చంద్రశేఖరరావు గారితో పరిచయం. పరిచయకర్త శ్రీ ఎస్ రమేష్ సుంకసారి.

ಸೊಗಸು ಪೈಟೇಸಿ ಪೋಲಿಸಿಗೆ ಮುಡಿಚಿ ಬಲಚಿನ ಚೇತ

Alex! Lampin! Sound! Roll camera! Roll insert! 54.8 take one! Jump!

ये आकाशवाणी हैदराबाद है, एफएम रेनबो 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। पेशे खिदमत है उर्दू प्रोग्राम नए रंग।

महफिल में हम ख्याल और मुखालिफ ख्याल के लोग आमने सामने ज़रूर होते हैं, और देखा जाता है कि कुछ सेहतमंद गुफ्तगु हो और कुछ खुशगवार लम्हात बांटा जाए। वैसे हम देखते हैं कि जब महफिल जमती हैं तो लोग चाहते हैं कि ये खुशी के पल जारी व सारी रहे। अक्सर व बेशतर ये तकरार में भी तब्दील होती है, लेकिन जब ये खुशगवार मोड़ लेती है तो यहाँ पर एक दूसरे को सही साबित करने की कोशिश ज़रूर होती है। आइए सुनते हैं गीत जिसको लिया है हमने फिल्म मुगले आज़म से। इस फिल्म के गीत को गाया था लता मंगेशकर जी और शमशाद बेगम ने। आइए सुनें।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हर्फ़े ताबिंदा, तहरीर थी सैयदा आसिमा सैदी की। समय नवाई सुनते हैं, भुलाई नहीं भूलते थे कुछ पुराने हिंदी फिल्म गीत।

दोस्तों महफिल जहाँ लोग मिलते हैं, आपस में गुफ्तगू करते हैं, कुछ अच्छी बातें और खटमीट बातें ज़रूर साझा करते हैं। अक्सर बेशतर

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे फिल्म मुगले आजम से लिया गया ये गीत। वैसे दोस्तों किस्मत भाग्य नसीब हर किसी का मुख्तलिफ होता है, जुदा जुदा होता है। जहाँ लोग अपनी किस्मत में अच्छाई देखते हैं और अक्सर बेशतर हम देखते हैं कि लोग नशीब व फराज से भी गुज़रते हैं, उतार चढ़ाव से गुज़रते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी ज़िंदगी को अपने अंदाज से जीते हैं, जिसे कहते हैं कि मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया। आइए सुनते हैं गीत जिसको लिया है हमने फिल्म हम दोनों से। इस फिल्म के गीत को गाया था मोहम्मद रफ़ी जी ने और गीतकार थे साहिर। संगीत से इसे सजाया था जयदेव ने। आइए सुनें।

दोस्तों, फिल्म हम दोनों से लिया गया ये गीत अभी आप सुन रहे थे। वैसे दोस्तों, ज़िंदगी के बारे में अक्सर बेशतर लोगों कहते हैं कि ज़िंदगी एक सुहाना सफ़र है। ज़िंदगी की तारीफ मुख्तलिफ अफकार के लोगों ने अपने अपने अंदाज से की है। किसी ने इसे बहता दरिया से तशबीह दिया है, किसी ने इसे एक बहती हुई नदी से कहा है। हर एक का अपना अपना एक अंदाज़ होता है ज़िंदगी को लेकर, और कुछ लोग इसे एक सुहाना सफ़र के तौर पर भी देखते हैं। आइए सुनते हैं गीत जिसको लिया है हमने फिल्म मधुमति से। इस फिल्म के गीत को गाया था मुकेश ने, गीतकार थे शैलेंद्र और संगीत से इसे सजाया था सलील चौधरी ने। आइए सुनें।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म मधुमति सिलिया क्या ये गीत। वैसे दोस्तों, ज़िंदगी में हमारे साथ हम ख्याल हो जाए कोई और हमें कोई अच्छे दोस्त मिल जाए तो ज़िंदगी का सफ़र काफ़ी खुशगवार और पुरसकून रहता है। और अक्सर बेशतर हम देखते हैं कि जब एक दोस्त दूसरे दोस्त का साथ देता है तो ज़िंदगी के जो चैलेंजेस रहते हैं, कठिनाइयाँ रहती हैं, ये दूर होती चली जाती है। आइए सुनते हैं गीत जिसको लिया है हमने फिल्म नया दौर से। इस फिल्म के गीत को गाया था मोहम्मद रफ़ी जी ने।

फिल्म नया दौर से लिया गया ये गीत अभी आप सुन रहे थे। वैसे दोस्तों हम बात कर रहे थे दोस्ती और उसके साथ गुजारे गए लम्हों की। वैसे ज़िंदगी का हर लम्हा लासानी और कीमती है, इसीलिए कहते हैं कि लिव द मोमेंट, हर लम्हे को जीना चाहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। आइए सुनते हैं ऐसा एक गीत जिसको लिया है हमने फिल्म गाइड से। इस फिल्म के एक गीत को गाया था किशोर कुमार जी ने। आइए सुने।

फिल्म गाइड से लिया गया ये गीत अभी आप सुन रहे थे। वैसे दोस्तों, ज़िंदगी में जब हम देखते हैं कि लोग अक्सर बेशतर जब किसी चीज़ का इरादा करते हैं तो चाहते हैं कि ये हमें ज़रूर हासिल हो, और इस पे दिल का फ़ैसले का अहम रोल होता है। इंसान का दिल ना सिर्फ इसे फ़ैसले लेने की तरफ माइल करता है, बल्कि दिल चाहता है कि लोग और अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए तगोदो करें, और फैसले अक्सर बेशतर दिल से लिए जाते हैं। आइए सुनते हैं गीत जिसको लिया है हमने फिल्म जेवल थीव से। इस फिल्म के गीत को गाया था किशोर कुमार जी ने। गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी और संगीत से इसे सजाया था ST बर्मन ने। आइए सुने।

फिल्म जबलदीप से लिया गया ये गीत अभी आप सुन रहे थे। वैसे दोस्तों, अक्सर बेशतर जब दोस्त आपस में मिलते हैं या हम खैर लोग आपस में मिलते हैं और ये मुलाकात जब एक दूसरे के लिए ज़रूरी हो जाती है, तब लगता है कि मुलाकात काफ़ी खुशाइंद है और इससे एक अच्छा लम्हा गुज़रता है। हम कोशिश करते हैं कि हमारी मुलाकात ना सिर्फ खुशी के पल बिखेरे बल्कि ये जारी वसारी रहे। अगर ये ना हो तो हम बेचैन हो जाते हैं और चाहते हैं कि ये सिलसिला जारी रहे। आइए सुनते हैं एक गीत जिसको लिया है हमने फिल्म हीर रांझा से। इस फिल्म के गीत को गाया था लता मंगेशकर जी ने। गीतकार थे कैफी आजमी और संगीत से इसे सजाया था मदन मोहन जी ने। आइए सुने।

फिल्म हीर रांझा से लिया गया ये गीत अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी हैदराबाद है, एफएम रेनबो 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे हैं भुलाई नहीं भूलते तहत कुछ पुराने हिंदी फिल्म गीत। आइए सुनते हैं एक और गीत जिसको लिया है हमने फिल्म लोफर से। इस फिल्म के गीत को गाया था आशा भोसले जी ने और गीतकार थे आनंद बख्शी जी। संगीत से इसे सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने।

0: फिल लोफर से लिया गया ये गीत अभी आप सुन रहे थे। वैसे दोस्तों अक्सर बेशतर हम देखते हैं कि तकल्लुफ जब लोग करते हैं तो ये एक अलग रूप धार लेती है। तकल्लुफ यानी सामने वाले को हम मौका देते हैं कि वो अपनी बात रखे। अक्सर बेशतर देखा गया है कि लोग पहले आप में मौका खो देते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि हम आगे बढ़ें और अपनी बात पहले रखें। आइए सुनते हैं एक ऐसा ही गीत जिसको लिया है हमने फिल्म बॉबी से। इस फिल्म के गीत को गाया था शैलेंद्र जी और लता मंगेशकर जी ने।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना

0: पहले तुम
1: पहले तुम
0: तुम
1: तुम
0: तुम
1: तुम
0: तुम
1: तुम
0: तुम देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप पहले आप पहले आप पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

फिल्म बॉबी से लिया गया ये गीत अभी आप सुन रहे थे। दोस्तों हम बात कर रहे थे ज़िंदगी में दोस्तों के होने की। वैसे दोस्त हो और वादे ना हो ये मुमकिन नहीं है। वादे हम एक दूसरे से ज़रूर करते हैं जो वफा भी होते हैं और वादे रह भी जाते हैं, लेकिन वादे करना लोग नहीं छोड़ते। इसीलिए वादा ज़रूर पूरा करना चाहिए। और आइए सुनते हैं इस पर गीत जिसको लिया है हमने फिल्म ये वादा रहा से। इस फिल्म के गीत को गाया था किशोर कुमार जी और आशा भोसले जी ने।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म ये वादा, रास लिया गया ये गीत। वैसे दोस्तों, ज़िंदगी में अक्सर बेशतर हम एक नई शुरुआत, एक नए जोश के साथ और एक नए ख्वाब के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ज़िंदगी हमें किस रुख पर ले जाती है। और जो लोग पक्के इरादे के होते हैं और अपनी मेहनत और अपने विज़न और अपने ख्वाब की ताबीर के लिए कोशिश करते हैं, ज़िंदगी भी उन्हें उस राह की तरफ ले जाती है। आइए सुनते हैं गीत जिसको लिया है हमने फिल्म मशाल से। इस फिल्म के गीत को लिखा है जावेद अख्तर जी ने, गीतकार और संगीत से इसे सजाया था हृदयनाथ मंगेशकर जी ने और गीत गाया है किशोर कुमार जी ने। आइए सुने।

बातचीत जब हम करते हैं और तोहफ़े तहफ़ का तबादला करते हैं तो ये गर्मजोशी ना सिर्फ दोस्ती को मजबूत रखती है बल्कि एक खुशी का माहौल बिखेर देती है। और अक्सर बेशतर तोहफे गिफ्ट का तबादला करना ना सिर्फ दोस्ती में ये एक नया बाब खोलती है बल्कि ये और भी मजबूत हो जाती है। और दोस्त अपने दोस्त की खुशी के लिए खुशी का इजहार भी करते हैं और नेक ख्वाहिशात का इजहार भी करते हैं। आइए सुनते हैं एक ऐसा गीत जिसको लिया है हमने फिल्म आन मिलो सजना से। इस फिल्म के गीत को गाया था मोहम्मद रफ़ी जी ने। गीतकार थे आनंद बख्शी जी और संगीत से इसे सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने।

फिल्म मशाल से लिया गया ये गीत अभी आप सुन रहे थे। दोस्तों हम बात कर रहे थे ज़िंदगी में दोस्तों की अहमियत पर। वैसे अक्सर बेशतर हम देखते हैं कि कोई महफिल हो और दोस्त आ जाए और दोस्त के साथ

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे फिल्म आन मिलो सजना से लिया गया ये गीत। वैसे दोस्तों जब दोस्त सफ़र करते हैं या ट्रैवल करते हैं तो ये ना सिर्फ खूबसूरत यादों बिखेरते हैं बल्कि इनके साथ गुजारे हुए पल यादगार लम्हों में शामिल हो जाते हैं, और ये पल अक्सर व बेशतर लोग अपनी ज़िंदगी में साझा ज़रूर करते हैं कि ये पल ना सिर्फ एक खुशी का एहसास देते हैं बल्कि ये हमें एक मुस्बित सोच भी देते हैं। आइए सुनते हैं गीत जिसको लिया है हमने फिल्म गुलामी से। इस फिल्म के गीत को गाया था लता मंगेशकर जी और शब्बीर कुमार ने।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म गुलामी से लिया गया ये गीत। अब आइए सुनते हैं दोस्तों आखिरी गीत जिसको लिया है हमने फिल्म साहिब से। वैसे दोस्तों, ज़िंदगी में दोस्तों का होना ना सिर्फ ज़िंदगी को खुशगवार बनाता है बल्कि एक ज़िंदगी में खुशियाँ बिखेर देता है। दोस्त ना सिर्फ मुश्किल में आपका हमदर्द, आपके साथी और आपके वेलविशर बनते हैं। तो आइए सुनते हैं गीत जिसको लिया था हमने फिल्म साहिब से। इस फिल्म के गीत को गाया है बप्पी लहरी जी ने। आइए सुने।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे प्लाई नहीं भूलते तहत कुछ पुरानी हिंदी फिल्म गीत। अब आइए सुनते हैं प्रोग्राम नारंग के आखिर में पयाम-ए-शब पेश कर रहे हैं जैदी।

0: आंख से दूर न हो, दिल से उतर जाएगा, वक्त का क्या है, गुजरता है गुजर जाएगा। रिश्तों की कदर करें, रिश्तों को वक्त दें, सिर्फ याद करना काफी नहीं, राबिता और तवज्जा जरूरी है। फासलों को ना बढ़ाएं, चाहे मसरूफियत हो मगर दिल का ताल्लुक कायम रखें। वक्त की कदर करें, जो लम्हे आज हैं कल वापस नहीं आएंगे। दिल से जुड़े रहें, अगर दिल में जगह मजबूत हो तो फासला भी कमजोर पड़ जाता है। रिश्ते खुद ब खुद कायम नहीं रहते, उन्हें वक्त, तवज्जा और खलूस से जिंदा रखा जाता है, वरना वक्त के साथ सब कुछ मुद्दम पड़ जाता है।
1: पयाम शब के साथ दोस्तों आज का नरंग प्रोग्राम अपने अख्तिताम को पहुंचता है। इस उम्मीद के साथ कल शाम 9:30 पर हम दोबारा हाजिर होंगे एक नई बस में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, आदाब।

0: ये आकाशवाणी हैदराबाद है, एफएम रेमो 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही देर में हिंदी और अंग्रेज़ी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: वाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया

0: तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं, इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया है कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। दिल्ली की अदालत ने आज नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है और इस बड़े षड्यंत्र की जांच करनी होगी। विशेष लोक अभियोजक नीतू गुप्ता सीबीआई की ओर से पेश हुई और दोनों आरोपियों से पूछताछ के लिए 14 दिनों की रिमांड की मांग की। कार्यवाही के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय COA के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित COA ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by Purnima Samant Kadakoti. Prime Minister Narendra Modi today said that India and the Netherlands are working together to build a trusted, transparent and future-ready supply chain to address global disruptions amid what he described as a decade of disasters marked by multiple crises. Addressing a community program in The Hague, Netherlands, as part of his five-nation tour, PM Modi said, "The world is facing a series of unprecedented challenges, including the COVID-19 pandemic, on

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 11:11 और 13 सेकेंड। उबैदुल्ला सिद्दीकी कहते हैं कि जिंदगी एक ख्वाब है, ये ख्वाब की ताबीर है। जिंदगी एक ख्वाब है, ये ख्वाब की ताबीर है। हल्का गेसुए दुनिया पाँव की जंजीर है। कुछ नहीं इसके सिवा मेरे तसर्रुफ में यहाँ, कुछ नहीं इसके सिवा मेरे तसर्रुफ में यहाँ। दिल का बस जितना इलाका दर्द की जागीर है। जी हाँ, जिंदगी इसी का नाम है और जिंदगी यूं ही चलती रहती है। मैं बात इसलिए कह रहा हूँ जिंदगी की, क्योंकि अगला नगमा जिंदगी से जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर मैं हूँ आपके साथ, आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब। और गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में सुनहरे दौर के उन्हीं नगमों के साथ हम हाजिर हैं जो आपके दिल के बेहद करीब है, जिसे आप बार बार सुनना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं। ऐसा ही एक नगमा है 1956 में आई एक फिल्म जागते रहो से। इस फिल्म के लेखक है ख्वाजा अहमद अब्बास साहब और इसका निर्देशन किया है सोमभू मित्रा ने। इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वालों में राज कपूर साहब, नरगिस, प्रदीप कुमार, सुमित्रा देवी, स्मृति विश्वास, सुलोचना चटर्जी, डेजी ईरानी वगैरह ने बहुत ही खूबसूरत किरदार निभाया था। इस फिल्म के गीतों को लिखा है शैलेंद्र ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा है सलील चौधरी साहब ने। इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा जिंदगी एक ख्वाब है, जिसे अपनी आवाज दी है मुकेश साहब ने। तो आइए इसी नगमे के साथ आज के इस सफर का आगाज करते हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत मेरे मनमीत की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में।

मन की बात है जन जन की, सभी की, कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फिरोज़ आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपकी अपनी पसंदीदा महफिल गीत मेरे मन मीत में। और गीत मेरे मन मीत में वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 11:26:28 और गीत मेरे मन मीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में उन चुनिंदा नगमों के साथ हम हाजिर हैं जो नगमे आपके दिल के बेहद करीब हैं। कुछ नगमे ऐसे हैं जिन्हें आप बार बार सुनते भी हैं, गुनगुनाते भी हैं, और कुछ नगमे ऐसे भी हैं जो ख़ास तौर से हम आपके लिए चुन कर लाए हैं आपके लिए, जिन्हें शायद ही आपने सुना होगा लेकिन है ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा ये नगमा। और अगला नगमा कुछ ऐसा ही है और ये नगमा है फिल्म परवरिश से। ये फिल्म आई थी 1958 में। सागर उस्मानी द्वारा लिखित इस फिल्म के निर्देशक थे एस बैनर्जी। और इस फिल्म में जिन लोगों ने अहम किरदार निभाया था वो थे राज कपूर साहब, माला सिन्हा, महमूद, नासिर हुसैन और ललिता पवार वगैरह ने। इस फिल्म के सारे ही नगमे बहुत ही प्यारे, बहुत ही खूबसूरत हैं, जिसमें अपनी आवाज़ें बख्शी हैं मुकेश, लता जी, मन्ना डे साहब, मोहम्मद रफ़ी साहब, आशा भोसले। उन्हीं नगमों में से एक ऐसा नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं जो फिल्माया गया है महमूद साहब और शोमैन राज कपूर साहब। इस नगमे को आप देखेंगे अगर पर्दे पर तो उन दोनों का तालमेल गाने के साथ इतना खूबसूरत लगता है जिसे आप बार बार देखना चाहेंगे और गुनगुनाना भी चाहेंगे। तो आइए वही नगमा हम आपको सुनते हैं, सुनवाते हैं और आप भी उस नगमे में खो जाइए इस बहुत ही खूबसूरत रिदम के साथ।

0: शिकवा क्या, जमाना यही कहता है, जमाना यही कहता है, जमाना यही कहता है।
1: अरे क्या

0: ओ मामा मामा मामा घर वाले खाए चक्कर ऐसा है अपना चक्कर चक्कर में तुम नहीं आना प्यारे मामा ओ मामा
1: परवरिश फिल्म का ये नगमा था और आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी साहब और मन्ना डे साहब की। बेहद खूबसूरत ये नगमा। इस नगमे को जब भी आप पर्दे पर देखेंगे तो इन दोनों की जुगलबंदी यानी इस नगमे के साथ साथ राज कपूर साहब और महमूद की जुगलबंदी देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। जिस तरीके की जुगलबंदी इस नगमे में है वो सचमुच बेहद खूबसूरत, बहुत ही प्यारी है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा।

खुश हो जाएगा। जिस तरीके की जुगलबंदी इस नगमे में है वो सचमुच बेहद खूबसूरत, बहुत ही प्यारी है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा गीत मेरे मनमीत की। सुनहरे दौर के उन नगमों के साथ हम हाजिर हैं, यानी गोल्डन एरा के उन नगमों के साथ हम हाजिर हैं जिसे आप बार बार सुनना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं। और ऐसे ही एक और नगमे के साथ हम आगे बढ़ेंगे, और ये नगमा है फिल्म 1959 में आई दिल दे के देखो से। नाज़िर हुसैन साहब के निर्देशन में बनी इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाया था शमी कपूर, आशा पारेख, सुलोचना लटकर, राज मेहरा, राजेंद्र नाथ, सुरेंद्र, इंदिरा बिल्ली, मुमताज़ अली, मलिका वगैरह ने। इस फिल्म के गीतों को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने, और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है उषा खन्ना ने। तो आइए इसे फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा हम आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब की बहुत ही प्यारी आवाज़ में।

मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में यह नगमा था फिल्म दिल देखे देखो। ये नगमा बेहद खूबसूरत, बहुत ही प्यारा था। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा गीत मेरे मनमीत की, और गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में अगला नगमा एक और बहुत ही खूबसूरत फिल्म सुनहरे दौर की फिल्म से, जो बनी थी आर के नायर के निर्देशन में और जिसे लिखा था आगा जानी और आर के नायर ने। इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाया था बेहद खूबसूरत जॉय मुखर्जी, साधना, किशोर साहू, शोभना सामर्थ, दुर्गा खोटे, हरी शिवदासानी, रवि टंडन वगैरह ने। यह बेहद खूबसूरत फिल्म थी अपने दौर की और बहुत ही खूबसूरत इसके नगमे भी थे। यह फिल्म आई थी 1960 में। इस फिल्म के गीतों को लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और बेहद खूबसूरत संगीत से सवारा था इकबाल कुरैशी साहब ने। इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर मोहम्मद रफ़ी साहब और सुमन कल्याण की कल्याणपुर की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर आप तमाम सुनने वालों का मैं फेरोज शानदार इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपकी अपनी पसंदीदा महफिल गीत मेरे मन मीत की। इस महफिल में बेहद खूबसूरत नगमों के साथ हम हाजिर हैं। ये वो दौर है, ये वो नगमे हैं जब हम सब के दिल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पुरानी यादें एक बार फिर से ताज़ा हो जाती हैं इन पुराने नगमों को जब सुनते हैं। तो ये वो दौर था, और वो दौर था 1947 के बाद से लेकर 1965 तक का, जिसे हम गोल्डन एरा या सुनहरा दौर हम कहते हैं। उसी दौर में एक फिल्म आई थी धूल का फूल, और यह फिल्म आई थी 1959 में। यश चोपड़ा साहब के निर्माण और निर्देशन में बनी इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाया था माला सिन्हा, राजेंद्र कुमार, नंदा, मनमोहन कृष्ण, अशोक कुमार वगैरह ने। यह फिल्म अपने दौर की बहुत ही खूबसूरत फिल्मों में से एक है। इस फिल्म के गीतों को लिखा है साहिर लुधियानवी साहब ने, और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है एन दत्ता ने। इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा गीत मोहम्मद रफ़ी साहब की बहुत ही प्यारी आवाज़ में आपके लिए।

0: आशीष की आवाज़ में नगमा था फिल्म गहरा दाग से, और यह फिल्म आई थी 1963 में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। गीत मेरे मनमीत की इस दिलकश में फिल्में, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त फेरोज। और दोस्तों, वक्त हो चुका है अब आपसे विदा लेने का, लेकिन विदा लेने से पहले एक और बेहद खूबसूरत नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं। नगमा नहीं, ये कव्वाली है जो यकीनन आपको पसंद आएगी। शमशाद बेगम और आशा भोसले जी की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में यह कव्वाली है फिल्म चौधवी का चांद से, और यह फिल्म आई थी 1960 में। इस फिल्म के निर्देशक थे एम सादिक, और इस फिल्म में जिन लोगों ने मुख्य किरदार निभाया था वो थे गुरुदत्त साहब, वहीदा रहमान, फरीदा जलाल, जॉनी वॉकर, मीनू मुमताज, मुमताज़ बेगम और टुनटुन वगैरह। इस फिल्म के गीतों को लिखा है हम सब के प्यारे, बहुत ही खूबसूरत, और इसमें बहुत ही खूबसूरत गीत हैं जिसमें म्यूज़िक दिया है रवि साहब ने, और ये नगमा है फिल्म चौधरी का चांद से। आवाज़ें हैं शमशाद बेगम और आशा भोसले की।
1: शर्मा के ये क्यों सब पर्दा नशीं, शर्मा

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण

0: उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में आज स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। दिल्ली की अदालत ने नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। कार्यवाही के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय COA के सिंधु जल संधि पर हालिया तथा कथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वकीलों और नागरिक समाज के साथ व्यापक विचार विमर्श किया। समिति ने अध्यक्ष पीपी चौधरी ने मीडिया को बताया कि समिति विभिन्न राज्यों से आपत्तियां और सिफारिशें एकत्र कर रही है। श्री चौधरी ने कहा कि बार बार चुनाव कराना राष्ट्रीय हित में नहीं है, क्योंकि इससे आर्थिक गतिविधियां बाधित होती हैं और शिक्षा विभाग, बैंकों तथा सरकार के संबंधित विभागों पर असर पड़ता है। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से चीन की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति शी जिनफिंग से मुलाकात करेंगे। श्री पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में गुजरात की टीम 4 विकेट खोकर 218 रन ही बना सकी। कोलकाता के लिए फिन एलन ने 93 रन की सर्वाधिक पारी खेली। सुनील नारायण को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत लिया है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by Purnima Samant Kadakoti. Prime Minister Narendra Modi said that India and the Netherlands are working together to build a trusted, transparent and future-ready supply chain to address global disruptions amid what he described as a decade of disasters marked by multiple crises. Addressing a community program in The Hague, Netherlands, as part of his five-nation tour, PM Modi said, "The world is facing a series of unprecedented challenges, including the COVID-19 pandemic, ongoing conflicts, and an emerging energy crisis." He cautioned that failure to address these challenges swiftly could reverse global development gains and push large sections of the population into poverty. Prime Minister Narendra Modi also underlined India's growing global role, describing the country as a land of opportunities in the 21st century that is driven by both technology and human values.
2: 21st sadi ka Bharat avsaron ki bhoomi hai. Bharat technology driven bhi hai aur humanity driven bhi hai. Bharat jitna ancient hai utna hi modern ban raha hai. और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं, इससे भारत का सामर्थ्य

पानी पर लिखी कहानी। जिसमें आप सुनते हैं ऐसी कहानियां जो आपके दिल को छू जाएं। छोटी सी कहानी से, बारिशों के पानी से, सारे वादे भर गए। पानी पर लिखी कहानी ना।

0: FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सुनना मत भूलिएगा।
1: 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और मैं हूं आपके साथ आप ही की आवाज मंजू। पानी पर लिखी कहानी में आज मैं सुनाने जा रही हूं अपनी ही लिखी कहानी अपनी ही आवाज में, जीत हौसलों की। शिवांगी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा पद संभालने जा रही है। आखिर उप मुख्यमंत्री होना कोई साधारण बात तो नहीं, और वो भी सबसे युवा उप मुख्यमंत्री होना। ये बात उसको रोमांच से ज्यादा

गौरव से भर रही है। पूर्ण बहुमत से बनी सरकार ने उसे और भी आत्मविश्वास से भर दिया है। शिवांगी की कार धीरे धीरे शपथ समारोह के मैदान की तरफ बढ़ रही है। अब से थोड़ी ही देर में उसे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी होगी। शिवांगी के दिल में गड़े हुए कांच आज उसे चुभ नहीं रहे थे, बल्कि वो मन ही मन उन लोगों का धन्यवाद कर रही थी जिन्होंने उसके भीतर उन कांच के टुकड़ों को बोया था। अब तक जिंदगी उसने फांकों में ही तो जी थी, लेकिन आज वक्त एक ऐसे फ्रेम में कैद है जो सिर्फ शिवांगी की वकालत में खड़ा है। शिवांगी बेखौफ और आजाद जिंदगी के लिए आगे बढ़ रही है।

शिवांगी की आंखें खुशी के आंसुओं से छलक रही थी और मन यादों की गलियों में घूम रहा था। कितनी जिद्दी रही है शिवांगी बचपन से ही। टॉपर होने के बावजूद उसने अपने दोस्तों की तरह कॉमर्स और साइंस नहीं लिया बल्कि आर्ट्स लिया।

था, जिसे कई बार एवरेज स्टूडेंट का सब्जेक्ट कह दिया जाता है। अपनी साइंस की मैम के बहुत डांटने पर उसने जवाब देते हुए कहा था, मैम मुझे प्रैक्टिकल लैब में एक अजीब सी घुटन होती है। साइंस में मुझे इतनी ग्रेविटी नहीं लगी जो वो मुझे अपनी ओर खींच सके। चीजों की तो पीएच वैल्यू है, पर जिंदगी की पीएच वैल्यू क्या हो? एक सिक्के के हेड टेल की प्रोबेबिलिटी से होते हुए ताश के 52 पत्तों की प्रायिकता की संभावना गणित के पास है, पर क्या कोई गणितज्ञ गिन पाएगा जिंदगी की प्रायिकता को? जो सब्जेक्ट जिंदगी के सवालों का जवाब ना दे, उसे पढ़ने का क्या फायदा मैम? अच्छा बाबा, अब तुम्हें कौन समझाए? जो मन करे सो करो, तुम तो हमें ही ज्ञान दे देती हो। समाज में मौजूद अव्यवस्था शिवांगी के मन में बेचैनी पैदा करती है। परिवार को लगता है कि शिवांगी अभी छोटी है, इसलिए जिद्दी है। बड़ी होगी तो शायद सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका विरोधी स्वभाव उम्र के साथ लगातार बढ़ता चला जाता है।

में शिवांगी के अच्छे मार्क्स आए थे और उसने इवनिंग कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में एडमिशन ले लिया था, क्योंकि ये सब्जेक्ट उसे उसके कई सवालों का जवाब देता है। कॉलेज की लाइब्रेरी उसके सुकून का कोना है। एक दिन लाइब्रेरी में बुक इशू कराते हुए शिवांगी ने नोटिस किया कि वो अपना लाइब्रेरी कार्ड घर बुलाई है। वह अपनी लाइब्रेरियन से बहुत रिक्वेस्ट करती है और कहती है, मैम, मैंने इन किताबों को बहुत मुश्किल से ढूंढा है, आप प्लीज इन किताबों को साइड में रख दीजिए, मैं कल अपना लाइब्रेरी कार्ड लाकर इन्हें इशू करा लूंगी। पर लाइब्रेरियन नहीं मानती। लाइन में खड़े सभी स्टूडेंट्स परेशान होने लगते हैं। आदित्य, जो कि शिवांगी का क्लासमेट है, उसके पीछे खड़ा है। वो कहता है, एक्सक्यूज मी मैम, मैम मुझे एक ही बुक इशू करानी है, आप मेरे कार्ड पर इनकी बुक इशू करा दीजिए। थैंक यू आदित्य, थैंक यू सो मच, इट्स ओके शिवांगी। अच्छा शिवांगी, प्लीज डोंट माइंड, मैं अपनी फुटबॉल मैच की प्रैक्टिस की वजह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लास नहीं ले पाया। तुम्हारी तैयारी कैसी है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मैंने तो उसके कुछ नोट्स भी बनाए हैं, मैं कल तुम्हारे लिए ले आऊं? ओह थैंक यू सो मच शिवांगी, थैंक यू सो मच। कॉफी ब्रेक में शिवांगी आदित्य से वीमेन इश्यूज पर बहुत सी बातें करती है और उसे बताती है कि रात को इवनिंग कॉलेज से घर लौटने में लड़कियों को कितनी दिक्कत होती है। धीरे धीरे शिवांगी और आदित्य की नजदीकियां बढ़ने लगती है और उनकी दोस्ती कब प्यार में बदल गई ये उन्हें भी

कॉलेज फेस्ट पर पूरे कॉलेज को डेकोरेट किया जाता है। फाइन आर्ट सोसाइटी ने कॉलेज ग्राउंड में एक बड़ा सा दिल सेल्फी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए बना दिया था, जो स्टूडेंट की धड़कन बना हुआ था। कुछ स्टूडेंट्स वहां पर सेल्फी ले रहे थे, कुछ स्टूडेंट्स वहां खड़े होकर लव पोइट्री सुना रहे थे, कुछ कपल्स आपस में एक दूसरे को प्रपोज कर रहे थे। इस भीड़ में खड़ा आदित्य शिवांगी के साथ डांस करने के ख्यालों में डूबा हुआ है, पर शिवांगी है कहाँ? शिवांगी तो कहीं नजर नहीं आ रही। आदित्य शिवांगी को फोन करता है। कहाँ हो तुम? कैंटीन में। वहां क्या कर रही हो? कैंटीन का वाटर कूलर खराब हो गया है। तो मैं कैंटीन वालों की प्रिंसिपल मैम से कंप्लेन करूंगी। रुको रुको नारी शक्ति, रुको तो सही। अच्छा मैं आता हूं। ये कैसी लड़की पे दिल आया है मेरा? मैं यहां दिल का गुलदस्ता लिए घूम रहा हूं और मेरी प्रेमिका उलझी हुई है कैंटीन के वाटर कूलर में। हे प्रेम की देवी, मेरी प्रेमिका को कुछ बुद्धि दे। आदित्य ने कैंटीन में जाकर देखा, शिवांगी ने पूरे कैंटीन स्टाफ को सर पर उठा रखा है। शिवांगी, ये क्या बदतमीजी है? इसमें बदतमीजी की क्या बात है आदित्य? तुम नहीं जानते, ये लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं। कॉलेज में जब भी कोई फंक्शन होता है, ये लोग वाटर कूलर खराब कर देते हैं ताकि स्टूडेंट्स वाटर बॉटल खरीदें और इनकी कमाई हो। पर आज मैं लोगों की प्रिंसिपल मैम से कंप्लेन करके रहूंगी, और देखो मैंने एप्लीकेशन भी लिख ली है। शिवांगी, तुम कॉलेज में नजरे घुमाकर तो देखो आज क्या सेलिब्रेट किया जा रहा है। आदित्य, तुम नजरे घुमाकर देखो ना, आज ही के दिन कितने स्टूडेंट्स खराब पानी पीने के लिए बेबस हैं। तो तुमने क्या सारे स्टूडेंट्स का ठेका ले रखा है? ठेका नहीं, मुझे ये समस्याएं बहुत अंदर तक प्रभावित करती हैं आदित्य। अगर तुम्हारा यही बिहेवियर रहा तो मुझे नहीं लगता कि हमारा रिलेशनशिप बहुत आगे तक जा पाएगा। और ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम स्टूडेंट यूनियन का चुनाव लड़ रही हो? हाँ लड़ रही हूँ। तुमने मुझसे कोई परमिशन क्यों नहीं ली? इसमें तुमसे परमिशन की क्या जरूरत है आदित्य? तुम फुटबॉल मैच के लिए बेंगलुरु गए, तुमने मुझसे पूछा था? शिवांगी, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो और इस रिलेशनशिप को बचाना चाहती हो तो तुम्हें स्टूडेंट यूनियन के चुनाव से अपना नाम वापस लेना होगा। आदित्य, ये कैसी शर्त रखी है तुमने मेरे सामने? तुम मुझसे मेरी जिंदगी छीन रहे हो? तुम प्यार को समझौते में बदलना चाहते हो? वो मैं नहीं जानता शिवांगी, पर मेरी शर्त यही रहेगी। तो फिर आदित्य, मेरा फैसला भी अड़िग रहेगा और मैं चुनाव लड़ूंगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत शिवांगी? कहते हुए आदित्य ने शिवांगी को जोर से धक्का दिया, जिससे शिवांगी गिर जाती है और उसके शरीर में कई चोटें भी आती हैं। पर ये चोटें उसकी एपिथीलियम की खुरच भर नहीं है, बल्कि उसके दिल में बहुत गहराई तक धसे हुए कांच हैं।

आदित्य शिवांगी से बदला लेना चाहता है और इसके लिए वो शिवांगी की सभी चुनावी रणनीतियों को उसके विरोध में खड़े उम्मीदवारों को बता देता है। आदित्य का ऐसा रूप देखकर शिवांगी को आदित्य से नफरत हो जाती है। शिवांगी को लेकर साजिशें रची जाती है। पूरे कैंपस में शिवांगी की खराब इमेज का प्रचार प्रसार किया जाता है, पर शिवांगी हार नहीं मानती। शिवांगी अपना काम पूरी शिद्दत के साथ करती है और उसे उम्मीद होती है कि उसके काम को जरूर नोटिस किया जाएगा। आदित्य का भाई स्पोर्ट्स यूनियन का प्रेसिडेंट होता है और इसी का फायदा उठाकर आदित्य अपने भाई के साथ मिलकर शिवांगी के खिलाफ कैंपेनिंग करता है और इसका नतीजा ये होता है कि स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स का एक भी वोट शिवांगी के फेवर में नहीं जाता और शिवांगी चुनाव हार जाती है। चुनाव परिणाम से ज्यादा शिवांगी आदित्य के घिनौने रूप से आहत होती है। आदित्य की व्यंग्यात्मक मुस्कान के जवाब में शिवांगी ने कहा, आदित्य मैंने चुनाव हारा है, हौसला नहीं।

मुझे भी कॉफ़ी के लिए ऑफ़र दिया था पर मैंने मना कर दिया। इसलिए उन्होंने मुझसे बदला लेने के लिए एग्ज़ाम में मेरे डेस्क के नीचे जानबूझकर किसी से चीटिंग चिट रखवा दी थी और नकल करने का आरोप मुझ पर लगा दिया गया। मैं इस घटना से बहुत डर गई हूँ दी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। ओके लतिका, तुम ऐसा करो, उन सर को कहो कि मैं कॉफ़ी पर जाने के लिए तैयार हूँ। तुम अपनी लाइव लोकेशन हमें भेजती रहना, मैं पुलिस से बात करती हूँ। उसे रंगे हाथ पकड़कर पुलिस के हवाले कर देंगे और यही उसकी सजा होगी। दोनों ऐसा ही करती हैं और अंततः उस सर को रेस्टिगेट कर दिया जाता है।

एक दिन यूनियन रूम में बैठी शिवांगी घर जाने के लिए काम समेट ही रही थी कि तभी हिस्ट्री ऑनर्स की स्टूडेंट लतिका अपनी प्रॉब्लम लेकर आती है। मे आई कम इन दी? यस प्लीज। लतिका कैसी हो? बहुत उदास लग रही हो, क्या हुआ? दी वो मिडिवल हिस्ट्री वाले सर है ना, कौन वो कैब ड्राइवर? दी आप भी जानते हैं उसके बारे में? पूरा कैंपस जानता है उसके बारे में। तुम्हें क्या कहा है ये बताओ। दी वो सर लड़कियों को कॉफी पे ले जाते हैं, उन्होंने

शिवांगी महिला सुरक्षा को लेकर बहुत से आर्टिकल्स न्यूज़पेपर में लिखती है। वो अपने आर्टिकल्स के माध्यम से बताती है कि वीमेन सिक्योरिटी को लेकर कॉलेज कैंपस में किस तरह से और बेहतर काम किया जा सकता है, क्योंकि लड़कियों की ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जिन पर लोगों का ध्यान नहीं जाता। सुनसान सड़कें और अंधेरा लड़कियों के लिए ही डर का पर्याय क्यों हूं? शिवांगी के आर्टिकल्स इतने ज्यादा लोकप्रिय होते हैं कि उसे अपने एक आर्टिकल के लिए मुख्यमंत्री से पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाता है और युवा प्रतिनिधि के रूप में मुख्यमंत्री से महिला सुरक्षा पर बात करने का मौका भी मिलता है। मुख्यमंत्री रेणुका सिंघानिया एक बहुत ही अनुभवी, सक्षम और ईमानदार महिला हैं, जो कि जन जन में लोकप्रिय हैं। एक संवेदनशील महिला होने के नाते महिलाओं का दर्द न केवल समझती हैं, बल्कि उनके प्रति सहानुभूति भी रखती हैं। मुख्यमंत्री

मंत्री रेणुका सिंघानिया की नई युवा शक्ति को पार्टी में सम्मिलित करने की इच्छा सदैव से रही है। वो शिवांगी को भी प्रेरित करती हैं कि वो और भी बेहतर काम करे, जिसमें उनकी तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से शिवांगी को पूरा सहयोग दिया जाएगा। शिवांगी यूनिवर्सिटीज और कई जगहों पर महिला सुरक्षा को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर काम करती है। धीरे धीरे शिवांगी टीवी चैनलों की एक लोकप्रिय प्रवक्ता बन जाती है। समय बीतता जाता है और शिवांगी का कार्य और भी फैलता जाता है। जनता जानती है कि चाहे वो महिला सुरक्षा की बात हो, छात्रों की समस्याओं की बात हो, चाहे युवा शक्ति की बात हो, अगर पार्टी में कोई पूरे अधिकार के साथ बोल सकता है तो वो नाम है शिवांगी। एक ईमानदार कार्यकर्ता और विद्वान प्रवक्ता के रूप में शिवांगी की छवि जनता के सामने उभर कर आती है। मुख्यमंत्री रेणुका सिंघानिया स्त्री मामलों में हमेशा ही शिवांगी से परामर्श लेती रही हैं। धीरे धीरे समय करवट बदलता है। अगले चुनावों में रेणुका जी जब फिर से बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनती हैं, तो उप मुख्यमंत्री के रूप में शिवांगी को चुनती हैं। शिवांगी यादों के गलियारों से लौट आती है। आज उसकी जीत का दिन है, उसके काम की जीत का दिन है। ये पद, ये गौरव उसने अपनी मेहनत और परिश्रम के बलबूते जीता है। शिवांगी ने कार का शीशा नीचे किया, उसके नाम की, मुख्यमंत्री के नाम की, पार्टी के नाम की नारेबाजी हो रही थी। सफेद बनारसी साड़ी में लिपटी शिवांगी ने आत्मविश्वास को अपने आभूषण के रूप में पहना हुआ है। मुख्यमंत्री रेणुका सिंघानिया जनता को संबोधित करते हुए कहती हैं कि मैं शिवांगी को उप मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि अपनी बेटी के रूप में आप सभी के बीच भेज रही हूं, और मुझे उम्मीद है कि शिवांगी को बेटी की तरह ही जनता का प्यार मिलेगा। शिवांगी एक नज़र रेणुका जी की तरफ और एक नज़र मंच से नीचे फर्स्ट रो में बैठी अपनी माँ की तरफ देखती है और मन ही मन सोचती है कि ये उसकी जीत नहीं बल्कि सच्चाई की जीत है, जिस पर उसकी दोनों माओं के हस्ताक्षर हैं।

0: दोस्तों, पानी पी लिखी कहानी में आज मैं सुना रही थी अपनी ही लिखी कहानी, अपनी ही जुबानी, जीत हौसलों की। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आपकी प्रतिक्रिया हमें अगली कहानी को और बेहतर करने की प्रेरणा देती है। तो आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाएं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868868753। इसके अलावा आप हमें ईमेल के माध्यम से भी अपने संदेश पहुंचा सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldairdelhi@gmail.com पर। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की प्रस्तुति, परिकल्पना और निर्देशन है रश्मि कुकरेति का। पानी पी लिखी कहानी में आज के लिए इतना ही। मुझे यानी मंजू बत्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: पानी पर लिखी कहानी। जिसमें आप सुनते हैं ऐसी कहानियां जो आपके दिल को छू जाएं।
2: छोटी सी कहानी से, बारिशों के पानी से, सारे वादे भर गए।
1: पानी पर लिखी कहानी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में आज स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है।

0: दिल्ली की अदालत ने नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। कार्यवाही के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा मारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वकीलों और नागरिक समाज के साथ व्यापक विचार विमर्श किया। समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने मीडिया को बताया कि समिति विभिन्न राज्यों से आपत्तियां और सिफारिशें एकत्र कर रही है। श्री चौधरी ने कहा कि बार बार चुनाव कराना राष्ट्रीय हित में नहीं है, क्योंकि इससे आर्थिक गतिविधियां बाधित होती हैं और शिक्षा विभाग, बैंकों तथा सरकार के संबंधित विभागों पर असर पड़ता है। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय COA के सिंधु जल संधि पर हालिया तथा कथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से चीन की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति शी जिनफिंग से मुलाकात करेंगे। श्री पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में गुजरात की टीम 4 विकेट खोकर 218 रन ही बना सकी। कोलकाता के लिए फिन एलन ने सर्वाधिक 93 रन की पारी खेली। सुनील नारायण को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi said that India and the Netherlands are working together to build a trusted, transparent and future-ready supply chain to address global disruptions amid what he described as a decade of disasters marked by multiple crises. Addressing a community program in The Hague, Netherlands, as part of his five-nation tour, PM Modi said the world is facing a series of unprecedented challenges, including the COVID-19 pandemic, ongoing conflicts, and an emergency energy crisis. He cautioned that failure to address these challenges swiftly could reverse global development gains and push large sections of the population into poverty. Prime Minister Narendra Modi also underlined India's growing global role, describing the country as a land of opportunities in the 21st century that is driven by both technology and human values.
2: 21st sadi ka Bharat avsaron ki bhoomi hai. Bharat technology driven bhi hai aur humanity driven bhi hai. Bharat jitna ancient hai utna hi modern ban raha hai. और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: Prime Minister Modi said the warmth and enthusiasm of the gathering made him feel he's attending a festival in India. He described The Hague as a living symbol of India and Netherlands' friendship and noted that Dutch leaders consistently praised the contribution of the Indian diaspora. Later, Prime Minister Narendra Modi met King Willem-Alexander and Queen Maxima of Netherlands during the second leg of his five-nation visit.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रोग्राम है गीत सुहाने और मैं हूं सुरभि आपके साथ। नमस्कार। महकी हुई फिजाएं दे कुछ आसमान दे, महकी हुई फिजाएं दे कुछ आसमान दे, अगर हो सके तो हमको एक नया जहान दे, आंखों को हौसला दे कि वो देखें कोई ख्वाब, ख्वाबों के हौसलों को मुसलसल उड़ान दे। तो चलिए गीत संगीत की बहुत ही खूबसूरत महफिल में आपको ले आए हैं, तैयार हो जाइए बहुत ही सुरीले नगमों, कुछ बातों और यादों के सफ़र पर चलने के लिए अगले कुछ पल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आपके नाम। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ। फिल्म का नाम है अनुरोध। किशोरदा की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में सुनते हैं ये।

गीत सुहाने प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ। जी हाँ दोस्तों, दिल के कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो दिल के कोने में कहीं चुपचाप बस जाते हैं, ना वो पूरी तरह से भुलाए जाते हैं और ना कभी वो दूर होते हैं। यकीनन वो याद बनकर हर धड़कन के साथ चलते रहते हैं। तो चलिए अगला गीत सुनते हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz। प्रोग्राम है गीत सुहाने और मैं हूँ सुरभि। दोस्तों, कुछ गीतों का जादू ही ऐसा होता है जिसे सुनकर मन तन सब खिल उठते हैं, जहाँ प्यार में नज़ाकत भी होती है, शरारत भी, और दिल को छू लेने वाली मिठास भी उन गीतों में पाई जाती है। और जब सुरों में मोहब्बत खुल जाए तो हर लम्हा बेहद हसीन लगने लगता है। तो इसी खूबसूरत अंदाज के साथ चलिए हम आप सुनते हैं मिलकर फिल्म आरजू का ये गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में। किसी ने बहुत खूब कहा है कि किसी की प्यास का तुमको जवाब होना था, किसी की प्यास का तुमको जवाब होना था, मुझे जवाब में बस लाजवाब होना था। किसी की प्यास का तुमको जवाब होना था, मुझे जवाब में बस लाजवाब होना था। वो मेरे रूबरू ताबीर बन के आया है, तमाम उम्र जिसे सिर्फ ख्वाब होना था।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग, सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

जिया कुछ गीतों में नटखटपन होता है, शरारतें होती हैं और हल्का फुल्का अंदाज दिल को मुस्कुराने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए और खूबसूरत गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं, माहौल को हल्का फुल्का रंगीन बनाते हैं इस बहुत ही चुलबुले गीत के साथ। तो फिल्म है इंसान जाग उठा, चलिए सुनते हैं ये गीत।

गीत सुहाने प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। धीरे धीरे हम अपने वक्त के अंजाम तक पहुंच चुके हैं, तो बहुत खूब कहा है किसी ने कि वक्त के साथ चला जाए यही बेहतर है, वक्त के साथ ढला जाए यही बेहतर है। उम्र के अपने तकाजे हैं, जरा गौर करें,

अगर यकीन नहीं आता तो आजमाए मुझे, वो आईना है तो फिर आईना दिखाए मुझे। मैं जिसकी आंख का आंसू था उसने कद्र न की, बिखर गया हूं तो अब रेत से उठाए मुझे। इसी के साथ गीत सुहाने का सफर यहीं तक। आपकी हमारी मुलाकात होगी 2:10 पर रात सुरमई में। और अब सुरभि को दीजिए इजाजत, आप सुनेंगे कुछ ही देर में हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। भारत और स्वीडन के बीच व्यापार और लोगों के आपसी संबंधों का इतिहास एक सदी से भी अधिक पुराना है। ये संबंध आपसी सम्मान, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित रहे हैं। इस संबंध की एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कड़ी नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर की वर्ष 1926 में स्वीडन यात्रा की शताब्दी से जुड़ी है। अब यह साझेदारी सांस्कृतिक आधार से आगे बढ़कर मजबूत औद्योगिक और आर्थिक सहयोग में बदल रही है। आकाशवाणी से बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की आगामी यात्रा दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के आमंत्रण पर आज और कल स्वीडन के गोथेनबर्ग के दौरे पर रहेंगे। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा ने कल डोमिनिका की विदेश मंत्री के साथ फार्माकोपिया और त्वरित प्रभाव परियोजना QIP पर समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया। श्री मार्गेरिटा ने डोमिनिका

0: के विदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा ऊर्जा मंत्री विंस एंडरसन से मुलाकात की और विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में एविएशन टर्बाइन फ्यूल एफटीए पर लगने वाले वैट को 25% से घटाकर 7% करने का फैसला लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के विजन के अनुरूप लिया गया है और इसका उद्देश्य विमानन क्षेत्र को राहत देना, पर्यटन को बढ़ावा देना और लॉजिस्टिक गतिविधियों को गति प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि रियायती वैट दर फिलहाल 6 महीने की अवधि के लिए लागू रहेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्र और दिल्ली के हित में लिया गया यह फैसला सरकार के लिए लगभग 985 करोड़ रुपए के संभावित राजस्व नुकसान का कारण बन सकता है। दिल्ली की अदालत ने नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। आरजीकर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई अब न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया था। मामले के एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो कर रही है, जिसने दोषी के लिए मृत्युदंड की मांग की थी, जबकि संजय रॉय ने अपनी रिहाई की अपील की थी। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सुरक्षा बलों ने संदिग्ध आतंकियों की तलाश के लिए बहुक्षेत्रीय तलाशी अभियान शुरू किया है। ये कार्रवाई मेंढर तहसील के मनकोट क्षेत्र में 12 मई को ही उस घुसपैठ की कोशिश के बाद शुरू की गई है, जिसमें एक घुसपैठिया मारा गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi said that India and the Netherlands are working together to build a trusted, transparent and future-ready supply chain to address global disruptions amid what he described as a decade of disasters marked by multiple crises. Addressing a community program in The Hague, Netherlands, as part of his five-nation tour, PM Modi said the world is facing a series of unprecedented challenges, including the COVID-19 pandemic, ongoing conflicts, and an emerging energy crisis. He cautioned that failure to address these challenges swiftly could reverse global development gains and push large sections of the population into poverty. Prime Minister Narendra Modi also underlined India's growing global role and describing the country as a land of opportunities in the 21st century that is driven by both technology and human values. Prime Minister Modi said the warmth and enthusiasm of the gathering made him feel he's attending a festival in India. He described The Hague as a living symbol of the India-Netherlands friendship and noted that Dutch leaders consistently praise the contribution of the Indian diaspora. Later, Prime Minister Narendra Modi met King Willem-Alexander and Queen Maxima of Netherlands during the second leg of his five-nation visit. Prime Minister Narendra Modi was presented with the historic 11th-century Chola copper plates by authorities of Leiden and University during his official visit to the Netherlands. The return of the priceless artifacts marks a landmark moment in India-Netherlands cultural cooperation and heritage restitution. The Prime Minister reached the Netherlands on Friday on the second leg of his five-nation tour. After concluding his visit to the Netherlands, Mr. Modi will travel to Sweden today. India and Sweden share a legacy of trade and people-to-people ties spanning over a century, rooted in mutual respect, peaceful coexistence and the principle of ahimsa. Today, this relationship is evolving from its cultural foundation into a robust industrial and economic partnership. In a conversation with Akashvani, the ambassador of India to Sweden, Anurag Bhushan, emphasizes the Prime Minister's upcoming visit is set to further cement the ties between the two nations. Head of Engineering and Product Development at Artifex in Sweden, Per Sundvall, expressed optimism about stronger industrial collaboration and greater business opportunities between India and Europe arising from the India-European Union Free Trade Agreement. electronics manufacturer.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है रात सुरमई और मैं सुरभि हाजिर हूँ आपके बीच। नमस्कार। बहुत खूब कहा है किसी ने कि कभी यूं भी आ मेरी आँख में, कभी यूं भी आ मेरी आँख में कि मेरी नज़र को खबर न हो। मुझे एक रात नवाज दे, मुझे एक रात नवाज दे, मगर उसके बाद सहर न हो। मेरे बाजुओं में थकी थकी अभी महवे ख्वाब खोई है चांदनी, न उठे सितारों की पालकी अभी आहटों का गुजर न हो। ये गजल है जैसे हिरन की आंख में पिछले रात की चांदनी, न बुझे खराबे की रोशनी कभी बेचराग ये घर न हो। कभी यूं भी आ मेरी आंख में कि मेरी नजर को खबर न हो, मुझे एक रात नवाज दे कि उसके बाद सहर न हो।

कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में समझाना आसान नहीं होता। दिल बस इतना जानता है कि जब कोई खास करीब हो तो सब कुछ अपना लगने लगता है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

रात सुरमई सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। दोस्तों, जब दिल किसी की यादों में खो जाए तो ये रातें लंबी लगने लगती हैं और नींद भी जैसे रूट सी जाती है। मोहब्बत का यही मीठा सा असर दिल को बेचैन भी करता है और मुस्कुराने की वजह भी बन जाता है।

ख्वाब इन आंखों से अब चुरा कर ले जाए, कब्र के सूखे हुए फूल उठा कर ले जाए। ये भी पानी है मगर आंखों का ऐसा पानी, जो हथेली पे रची मेहंदी उड़ा कर ले जाए। मैं मोहब्बत में महकता हुआ खत हूँ मुझको, मैं मोहब्बत में महकता हुआ खत हूँ मुझको, जिंदगी अपनी किताबों में दबा कर ले जाए, ख्वाब इस आंखों से अब कोई चुरा कर ले जाए।

मुझसे बिछड़ कर खुश रहते हो, मुझसे बिछड़ कर खुश रहते हो, मेरी तरह तुम भी झूठे हो। एक टहनी पर चांद टिका था, मैं ये समझा तुम बैठे हो। मुझसे बिछड़ कर खुश रहते हो, मेरी तरह तुम भी झूठे हो। और चलिए चलते चलते मोहरा फिल्म से सुनते हैं पंकज उदास साहब की आवाज़ में ये गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। भारत और स्वीडन के बीच व्यापार और लोगों के आपसी संबंधों का इतिहास एक सदी से भी अधिक पुराना है। ये संबंध आपसी सम्मान, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित रहे हैं। आकाशवाणी से बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की आगामी यात्रा दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के आमंत्रण पर आज और कल स्वीडन के गोथेनबर्ग के दौरे पर रहेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों नेता द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और हरित परिवर्तन, AI प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन और जन संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संबोधित करेंगे, जिसमें यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन भी मौजूद रहेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात दौरे के दौरान विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की। अहमदाबाद और गांधीनगर में उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकों में नागरिक सुविधाओं और आधारभूत ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। दक्षिण पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय में श्री शाह ने गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों और वृक्षारोपण अभियान की समीक्षा की। उन्होंने सरखेज गांधीनगर कॉरिडोर के आधुनिकीकरण और घाट लोडिया, गोटा, चांद लोडिया तथा थलतेज क्षेत्रों में जिलों को जोड़ने की परियोजनाओं को तेजी से

पूरा करने के निर्देश दिए। आरजीकर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई अब न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग कर दिया था। मामले के एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो कर रही है, जिसने दोषी के लिए मृत्युदंड की मांग की थी, जबकि संजय रॉय ने अपनी रिहाई की अपील की थी। दिल्ली की अदालत ने नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस और सीआरपीएफ ने ऑपरेशन अंतिम प्रहार के अंतर्गत 8 माओवादियों को गिरफ्तार किया है और 5 अन्य माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। गिरफ्तार किए गए 8 माओवादियों में 2 संभागीय समिति सदस्य और 2 प्लाटून पार्टी समिति सदस्य शामिल हैं। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटन्स को 29 रन से हरा दिया। सुनील नारायण को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सुनील नारायण ने 2 ओवर में 29 रन बनाए। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जब दो सुर मिलते हैं तब सिर्फ संगीत नहीं बनता बल्कि भावनाओं की एक नई कहानी जन्म लेती है। कभी प्यार, कभी तकरार, कभी दोस्ती तो कभी शरारत। हर एहसास को युगल गीतों ने बेहद खूबसूरती से सजाया है, संवारा है। तो चलिए आज हमराही के जरिए चलते हैं, सुनते हैं कुछ ऐसे ही उम्दा युगल गीतों को। माध्यम आपका पसंदीदा चैनल आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमराही का सफर है ये। समय हुआ है 3:11 और 46 सेकंड सुबह के, और इस खूबसूरत से प्यारे से समय के साथ आपके साथ रहूंगी इस सफर पर, आप ही की दोस्त रूपा धवन। नमस्कार।

साथियों, जब हम किसी को दिल से चाहते हैं तो कई तरह के एहसास होने लगते हैं। हाँ, बेशक हर व्यक्ति का एहसास अलग होता है। उसकी छोटी छोटी बातें भी खास लगने लगती हैं। उसकी खुशी अपनी खुशी लगती है, उसका कुछ दिनों का नहीं सदियों पुराना साथ लगता है। फिलहाल आपका और हमारा साथ बरकरार है आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमराही के कार्यक्रम में आप हैं रूपा के साथ।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आपका और हमारा सफर बरकरार है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमराही का सफर और इस सफर पर आज आपके साथ हूं मैं रूपा धवन। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं अगला खूबसूरत सा ये गीत आप सभी के लिए।

तेरे साथ रहने के बहाने ढूंढते हैं, तेरे साथ रहने के बहाने ढूंढते हैं, दिल की बातें मुस्कुराकर छुपाते हैं। तुझे क्या पता तेरी एक झलक के लिए हम रोज नए रास्ते बनाते हैं।

साथ जब मनचाहा होता है तो हम जिंदगी की सीमाओं से आगे बढ़ने का हौसला भी जुटा लेते हैं, और जब साथी प्यारा हो तो उसके लिए तो हम जान की कसम भी खा लेते हैं।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है 3:46 और 47 सेकंड। आप हैं हमराही के सफ़र पर रूपा के साथ। और दोस्तों, रेडियो का वो सुनहरा दौर और उस पर ये गीत लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन जाते हैं। जी हाँ, आज भी ये गीत और रेडियो हम सबके दिलों में खास जगह बनाए हुए हैं। सुबह की शुरुआत, शाम की चाय या रात की तन्हाई, हर पल में ये गीत हमारा साथ निभाते हैं। और जब दो दिल मिलते हैं तो अपने दिल की बातों को कुछ इस तरह से बयां करते हैं, क्योंकि जब मुलाकात होती है तो दोनों के दिल में उथल पुथल होती है कि कुछ मैं अपने दिल की बात कहूँ, कुछ मैं अपने दिल की बात कहूँ। दोनों तरफ से तैयारी हो रही होती है कि क्या बात कहें, क्या बात करें। सुनते हैं एक ऐसा ही खूबसूरत सा ये नगमा आप सभी के लिए।

दो दिल मिले तो जैसे दुआ रंग लाई, दो दिल मिले तो जैसे दुआ रंग लाई, खामोश सी जिंदगी में भी उमंग सी आई, सारे नाम भूल गए बस एक ही नाम याद रहा, सारे नाम भूल गए बस एक ही नाम याद रहा, तू मेरे साथ था तू मेरे साथ रहा।

फिलहाल हम रीमा हमराही को हम यही विराम देते हैं और मिलेंगे आपसे कुछ ही देर में। फिलहाल आप सुनेंगे कुछ ही देर में, कुछ ही पलों में, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में समाचार। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के आमंत्रण पर आज से स्वीडन के गोथेनबर्ग की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। ये यात्रा भारत और स्वीडन के बीच लगातार मजबूत होते रिश्तों में एक महत्वपूर्ण अध्याय मानी जा रही है। यह दौरा प्रधानमंत्री की व्यापक यूरोप यात्रा का तीसरा चरण है और भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता इस वर्ष जनवरी में लागू होने के बाद यूरोप की उनकी ये पहली यात्रा भी है। आकाशवाणी से बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करेगी। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संबोधित करेंगे, जिसमें यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन भी मौजूद रहेंगी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के तहत नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। गृहमंत्री अमित शाह ने अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे के दौरान कल पहले दिन विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की। अहमदाबाद और गांधीनगर में उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकों में नागरिक सुविधाओं और आधारभूत ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। दक्षिण पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय में श्री शाह ने गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों और वृक्षारोपण अभियान की समीक्षा की। उन्होंने सरखेज गांधीनगर कॉरिडोर के आधुनिकीकरण और घाट लोडिया, गोटा, चांद लोडिया तथा थलतेज क्षेत्रों में झीलों को जोड़ने की परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। गृहमंत्री ने गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के 70 नव निर्वाचित पार्षदों से भी मुलाकात की। दिल्ली की अदालत ने नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया है। विशेष CBI न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को CBI हिरासत में भेजा। कार्रवाई के दौरान CBI ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। CBI ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय COA के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सक

अरुणिमा है उम्मीद की पहली किरण जो हर रात के बाद नया सवेरा लाती है, हौसलों से जो दिल रोशन रखते हैं, जिंदगी भी उनके गीत गुनगुनाती है। धीरे धीरे सुबह हो रही है, रात की चादर धीरे धीरे अपने आप में सिमट रही है। चलिए नाम लेते हैं उस प्रभु का जिसने एक और नई सुबह हमें दी। अरुणिमा का सफर है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप हैं रूपा के साथ। नमस्कार।

अरुणिमा सी रोशनी हो तेरे हर ख्वाब में, अरुणिमा सी रोशनी हो तेरे हर ख्वाब में, नई सुबह की चमक हो तेरे हर जवाब में, अंधेरों से लड़कर जो मुस्कुरा सके वही असली उजाला है इंसान के स्वभाव में। वैसे दोस्तों, जीवन जीने की उत्साह में, या यूं कहें कि जीवन जीने की जद्दोजहद में, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हम पहले अपने आप को तराश सकें, इतना तराशें कि दूसरों की जय से पहले हम पहले खुद की जय करें।

हमारी ज़िंदगी में यादों का एक अहम हिस्सा है। ये यादें हमें खुशी के तो कभी गम के आंसू दे जाती हैं। खुशी के आंसू हंसी के साथ साथ निकलते हैं और दुख के आंसू तो वैसे ही अश्रुधारा निकल जाते हैं। इन यादों को सोचते हुए चलिए चलते हैं उस यादों के गलियारे की ओर, जहाँ ये गीत हमें पुकार रहा है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर।

माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: समय हुआ है 4:29 और 44 सेकेंड। आप हैं अरुणिमा कार्यक्रम में अपनी दोस्त रूपा के साथ।
1: गोपी मिस्टर गोपी जी।

समय हुआ है 4:35 और 5 सेकंड। अरुणिमा का सफ़र है और ये वक्त भी गुनगुनाने की सदाएं दे रहा है एक नई ऊर्जा के साथ। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप रूपा के साथ। अरुणिमा में आपके साथ है रूपा। साथियों, किसी ने कहा है कि बुरे कर्म का अंजाम भी बुरा ही होता है। हर गलत रास्ता कहीं ना कहीं रोता है। आज चाहे सुकून लगे गलतियों का साथ, आज चाहे सुकून लगे गलतियों का साथ, कल वही इंसान कर्मों से हारता है। एक गीत ऐसा ही आया सावन झूम के फिल्म से आप सभी के लिए, इस बात को, इन पंक्तियों को सार्थक करता हुआ।

हार से डर कर बैठ जाना आसान होता है, मगर कोशिश करने वाला ही महान होता है। वैसे जीत भी उन्हीं के कदम चूमती है अक्सर, जिनके इरादों में सच्चा तूफान होता है।

हमारी जिंदगी में रिश्तों की भी एक खास अहमियत है। रिश्तों के तानों बानों में गुजरती ये जिंदगी कभी प्यार के अनमोल रत्नों को जोड़ती है तो कभी और किसी सपनों के धागों को बुनती है। इसी कश्मकश में ये जिंदगी की राहें कभी ऊपर कभी नीचे, कभी उतार कभी चढ़ाव, इसके साथ साथ चलती जाती है, जिसमें अनेक भावों को समेटे हुए हमारा ये दिल कुछ गुनगुनाता भी है, कुछ गाता भी है। फिलहाल आप गुनगुना रहे हैं हमारे साथ, यानी आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। रिश्ते चाहे बदलते रहें, अरुणिमा का सफर है इस वक्त आपके साथ और रिश्तों से जुड़ी बातें हम कर रहे हैं। आज के इस सफर में आपके साथ हूं मैं, रूपा। तो जनाब, रिश्ते चाहे कैसे भी हों, कैसे भी रहें, लेकिन हमें अपनी तरफ से पूरा प्रयास रखना है ताकि हमारे जीवन के सुंदर मूल्यों को हम दूसरों के सामने और अपने आगे दर्शा सकें।

तो जनाब, समय भी रेत जैसे मुट्ठी से फिसलता है ना, ऐसे ही हमारे हाथों से फिसलता जा रहा है। और अभी फिलहाल वक्त है 4:55 और 6 सेकंड। आप हैं अरुणिमा में रूपा के साथ। भंवर कितना भी गहरा क्यों ना हो, कश्ती का हौसला डूबने नहीं देता। जो दिल उम्मीद से रोशन हो, कोई अंधेरा रोक नहीं सकता। जी हाँ, दुनिया की जो दुनियादारी है वो हमें यही सिखाती है कि दुनिया में कितने भी उतार चढ़ाव आए, चाहे हमारी ज़िंदगी में, हमें अपनी राहों को छोड़ना नहीं है। अपने दिल की उमंगों के साथ, पुरजोर कोशिश के साथ, बस आगे ही आगे बढ़ते रहना है।

0: अरुणिमा से रूपा विदा लेती है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और उसके बाद आपके साथ फिर से मुलाकात होगी भोर सुहानी कार्यक्रम में। तब तक के लिए रूपा को विदा दीजिए, नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। यह यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि साबित होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वार्ता करेंगे। इसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डर लायन भी यूरोपीय राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी। ये यूरोप के उद्योगपतियों का एक प्रमुख मंच है। प्रधानमंत्री मोदी की इस वर्ष जनवरी में ऐतिहासिक भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के लागू होने के बाद यूरोप की पहली यात्रा है। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की यात्रा के अंतर्गत नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: इस दौरान टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण के लिए साझेदारी की है। दिल्ली की एक अदालत ने नीट पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा बागमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया है। सुनवाई के दौरान CBI ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र तैयार करने की टीम में शामिल थे। CBI ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा बागमारे से लीक सामग्री एकत्र की। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वकीलों और समाज के अन्य वर्गों के साथ व्यापक विचार विमर्श किया। समिति की अध्यक्ष PP चौधरी ने बताया कि समिति विभिन्न राज्यों से आपत्तियां और सिफारिशें एकत्र कर रही है। श्री चौधरी ने कहा कि बार बार चुनाव कराना राष्ट्रीय हित में नहीं है, इससे आर्थिक गतिविधियां बाधित होती हैं और शिक्षा विभाग, बैंकों तथा सरकार से संबंधित विभागों पर असर पड़ता है। RG कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई अब न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया था। मामले की एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के सभी निर्णय को भी अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि स्थगित करने का भारत का निर्णय अभी लागू है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस और CRPF ने ऑपरेशन अंतिम प्रहार के अंतर्गत 8 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। 5 अन्य माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। गिरफ्तार किए गए 8 माओवादियों में 2 संभागीय समिति सदस्य और 2 प्लाटून पार्टी समिति सदस्य शामिल हैं। IPL क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे पंजाब किंग्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। वहीं दिल्ली में शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे।

स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। भोर सुहानी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके इस प्यारे से स्वागत के साथ प्यारा सा नमस्कार रूपा धवन का। तो जनाब, आज की भोर सुहानी क्या कुछ खास लाई है, क्या कुछ हमने देना है जिंदगी को और क्या कुछ हमें देगी जिंदगी, इसी सोच विचार को रखते हुए बढ़ाते हैं कार्यक्रम को आगे भोर सुहानी के साथ और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत जो हम सबको प्रेरणा देता है उस प्रभु की आराधना की।

इस भोर सुहानी में, और ये भोर सुहानी नई उमंग नई आशा लेकर हर दिल में उजियारा लाई है। भोर सुहानी कहते हमसे कि हर दिन नया सितारा है। आपके मन की शक्ति, सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा, दूसरों के प्रति सम्मान और प्रेम भाव रखकर मन पर विजय पाना जीवन के सुंदर मूल्यों को दर्शाती है। देखते हैं आज कौन सी दिशा में हमें ये जिंदगी ले जाती है।

से कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है 5:25 और 33 सेकंड। आप हैं रूपा के साथ, भोर सुहानी कार्यक्रम लेकर आई है आपके लिए रूपा। तो जनाब, सुबह की ताजगी मन में एक नया उत्साह तो भरती ही है ना। साथ ही हमें ये हमारे लक्ष्य तक पहुंचने की प्रेरणा भी देती है। और जो सुबह का नज़ारा होता है ना दोस्तों, सुबह ये सरसर चलती हवा और इसके साथ साथ खुशी से झूमते पेड़ों के पत्ते लगातार यही संदेश देते हैं कि आओ देखो और इस नई सुबह का अपने दिल से स्वागत करो। ऐसे भरपूर नज़ारों का आनंद उठाएं, लुत्फ उठाएं हमारे साथ।

पक्षियों की चहचहाहट और उनका मधुर संगीत, ठंडी हवा की सरसराहट सभी हमें सिखाते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हर अंधेरी रात के बाद उजाला जरूर आता है। ऐसा उजाला जो हमारी जिंदगी की कली को खिला देता है।